सुप्रभात, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद

0: बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने रामचरित मानस।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ये भक्ति रचना हमने ली थी फिल्म मदर इंडिया से, बोल लता मंगेशकर के, माफ़ कीजिएगा, स्वर लता मंगेशकर का, बोल लिखे शकील बदायूनी ने और धुन से सजाया नौशाद ने।

0: चंदा और बिजली फिल्म से ये भक्ति रचना अभी हमने आपको सुनवाई, आवाज़ मन्ना डे की थी। अगली भक्ति रचना खानदान फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में।
1: ओ

वाणी जयराम का यह स्वर था। फिल्म का नाम था गुड्डी। आइए सुनते हैं वंदन कार्यक्रम की आखिरी रचना।

0: मुझे अपनी शरण में ले लो।
1: इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हमने लिया है हरियाली और रास्ता फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है। उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम 11,000 लड़कियां। बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन से सजाया एन दत्ता ने।

सुमन कल्याणपुर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

ये गीत कोई साधारण गीत नहीं है। 90 के दशक का अल्टीमेट रोमांस एंथम कंसिडर किया जाता है इसे। इस गीत ने अपने आप में कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इस गीत की अगर बात करें तो ये कोई हमारे देश से सीमित नहीं रहा। इस गीत ने अपने परचम इस देश दुनिया के बाहर भी बनाए हैं और फैलाए हैं। इतने मधुर गीत के साथ जब भी सुना जाता है एक अलग सा समा बंध जाता है। इस गीत के बारे में और भी बहुत सारी कहानियां हैं कि ये गीत जहां फिल्माया गया पंजाब के सरसों के खेत में, तो वो अपने आप में एक बहुत आइकॉनिक एस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है या जाना जाता है। और भी बहुत सारी बातें इस गीत से जुड़ी है, पर इस गीत पर हम क्यों पहुँचे आज इसके लिए बात करते हैं। 21 मई की बात है, तो 21 मई को इस गीत को हमने लिया था फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के को लिखा और निर्देशित किया, दोनों के लिए अगर किसी का नाम हम सबको याद है तो वो है आदित्य चोपड़ा। और उनका आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। उनके और भी कार्य बहुत सारे फिल्मों में हैं, और हम सबसे पहले बात करने के लिए हमने इसी गीत को चुना। और भी फिल्मों का नाम हम लेंगे, पर एक और गीत उन्हीं की फिल्म से।

यशराज फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा बैनर है और बहुत सारी जगहों पर उन्हें इमिटेट किया जाता है, कहीं भी रियल लाइफ में, क्योंकि बॉलीवुड का इतना बड़ा असर हमारे आम जीवन पर भी है कि जहाँ भी कहीं शिफॉन की साड़ी में कोई पल्लू लहराते हुए नज़र आए तो यशराज फिल्म का ज़रूर से नाम आ ही जाता है। तो इसी तरह ये जो गीत अभी आपने सुना बेफिक्र फिल्म से था, ये भी यशराज फिल्म ने ही प्रोड्यूस की और यशराज फिल्म के मेन हेड हैं आदित्य चोपड़ा, जिनका जन्म 21 मई 1971 को हुआ मुंबई महाराष्ट्र में, और वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर

प्रोड्यूसर भी है, स्क्रीन राइटर और स्टूडियो एग्जीक्यूटिव भी है, और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में करेंगे और उन्हीं की फिल्मों के गीत हम आज आपको सुनवाने वाले हैं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में।

सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: आदित्य चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा जगत को कई ब्लॉकबस्टर मूवीज दी और सिर्फ 23 साल की कम उम्र में डायरेक्शन और लेखन में अपनी सबसे उम्दा फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो हिंदी सिनेमा को दी वो अब तक की सबसे ज़्यादा बार लंबे समय तक चलने वाली फिल्म के नाम पर भी उसके नाम पर खिताब दर्ज है। और भी बहुत कुछ सुंदर सुंदर कार्य उन्होंने किए, बहुत सारी फिल्में। और अगर बात करें उनके परिवार की तो उनके पिता यश चोपड़ा और माता पमेला चोपड़ा के ये सबसे बड़े बेटे हैं।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी।

मोहब्बतें, ये फिल्म भी उन्हीं की देन है हिंदी सिनेमा जगत को। और भी बहुत बेहतरीन फिल्मों से उन्होंने हमारे फिल्म जगत को समृद्ध किया है।

हैं यशराज फिल्म्स ने। इस बैनर ने वो कुछ दिया है। अगर हम मोहब्बतें की भी बात करें तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक चश्मा हाथ में लिए, जिस तरह बाहें फैलाए, कंधों पर स्वेटर डाले, शाहरुख खान का वो एक लुक था। और बहुत सारी संगीत की नई तरीके, यूथ को जिस तरह से इंस्पायर किया, और या यूं कहें रोल मॉडल की तरह, बहुत सारी आइकॉनिक सीन्स, डायलॉग्स उनकी फिल्मों ने दिए और बेहतरीन गाने भी।

सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही काम किया और भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दूसरे कलाकारों के साथ भी दी। तो आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस्ड एक और फिल्म बंटी और बबली फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान का भी बहुत गहरा नाता है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स के साथ, उसमें यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी डर, उसके साथ शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जब सिलसिला बढ़ता गया तो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान की आती गई और शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के हिट से हुई। और उसके बाद कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें मोहब्बतें, वीर ज़ारा, चक दे इंडिया, जब तक है जान, दिल तो पागल है, पठान, कई सारी फिल्में। पर ऐसा नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से, और हम बात कर रहे हैं आज आदित्य चोपड़ा, जिनका जन्मदिन है। इन फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर या चेयरमैन ऑफ यशराज फिल्म से भी आप इन्हें जान सकते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान को इश्क सिखाने का काम, या यूं कह दीजिए कि हवा में इश्क घोलने का काम, यशराज फिल्म्स के गीतों ने और शाहरुख खान की एक्टिंग ने किया। पर ऐसा ही नहीं है, अगर अभी जो गीत हमने सुना वो चक दे इंडिया फिल्म से है, भरपूर ये कह सकते हैं खेल की पूरी स्पोर्ट्स स्पिरिट को भरने का भी पूरा काम उनके फिल्मों ने किया, और वैसी ही उम्दा एक्टिंग शाहरुख खान ने भी इस फिल्म में की। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कलाकारों के साथ भी उन्होंने काम किया, और वैसा ही एक गीत हम आपको सुनवाते हैं, सलाम नमस्ते, जिसे भी आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आज हम बात कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा पर। आदित्य चोपड़ा की करियर की फिल्मी बातें हमने की, पर अगर उनके निजी जीवन पर थोड़ी और नज़र डालें तो उन्होंने उनकी जो पत्नी है वो भी अनछुआ नाम नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। जी हाँ, उनकी पत्नी का नाम है रानी मुखर्जी, और जिनसे उन्होंने शादी की 2014 में, और उनकी एक बेटी भी है अदीरा। और भी जानेंगे उनके बारे में, पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में ये बेहतरीन सा नगमा उन्हीं की एक फिल्म से।

आदित्य चोपड़ा एक बेहद एकांत प्रिय और सोशल मीडिया पेपराजी जैसी प्रचार पार्टियों से बहुत दूर रहते हैं। वो बहुत शांत, सहज और सरल स्वभाव के हैं, ये ऐसा उनके करीबी लोग कहते हैं। और वो बहुत व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक रवैये को अपने काम में अपनाते हैं और बहुत बहुत सरल जीवन जीने में विश्वास करते हैं। हालांकि उनका पूरा जीवन फिल्मों से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, फिर भी अपने जीवन में बहुत सहज और सरल रहते हैं। आज आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और इसका ये आखिरी गीत भी वॉर 2 फिल्म से, यशराज फिल्म्स के बैनर से ही।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल।

0: पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है शंभुनाथ कुर्मी।
2: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
2: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया।

0: जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination.

0: अभिनंदन, नमस्कार सभी सुधी श्रोताओं का। सुबह की पहली चाय हो गई, ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जहां हम बात करेंगे थोड़ा सा साहित्य, थोड़ा सा संगीत, थोड़े से जीवन से जुड़ी बातें होंगी, तो कहीं आज हम पहलवानी का भी जिक्र करेंगे। शांति और अमन की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ चटकारे लेती हुई बातें काम की भी होंगी। ये है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार। तो मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आगे बढ़ते हैं और आपका परिचय करवाते हैं हमारी आज की सार्थक टीम से।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं कैलाश सोलंकी और फारूक अहमद शेख।
0: कंट्रोल रूम से हमें साथ मिल रहा है गजेंद्र सिंह जालसू का।
1: हमारे साथ उद्घोषिका हैं एचपीटी पर विजेता।
0: और वहीं एफएम का कंसोल संभाले है नेमी।
1: नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ की।
0: परिकल्पना और प्रस्तुत करता है इस प्रोग्राम के संजय व्यास। और इन सभी के साथ मैं हूं कविता
1: और मैं मीता मुल्तानी।
0: तो दोस्तों, हम दोनों हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर नमस्कार। यहाँ हम आधे घंटे का सफर तय करेंगे नए नवेले गीतों के साथ। तो पहला नजराना ये आपके लिए।

0: कहते हैं मीता जी, ऐसा कहा जाता है कि नफरतें जो हैं उनकी जमीन बड़ी लंबी चौड़ी होती है, वो हमेशा मोहब्बत पर कब्जा करती हैं और हंसते मुस्कुराते जो चेहरे होते हैं उसमें जहर घोलने का काम कर देती है।
1: बिल्कुल
0: तो खास तौर पे हम सुबह सवेरे अपने दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि ये एक शब्द वो है जो न हमारे फोन में हो, न हमारी जिंदगी में हो, न हमारी डिक्शनरी में हो, न हमारी आदतों में हो। दूसरा शब्द है जिसे आप शामिल कर सकते हैं, वो है ठंडा ठंडा एहसास लिए।
1: आइसक्रीम, बिल्कुल।
0: और
1: तो
0: क्यों
1: और ऐसी गर्मी में तो आइसक्रीम का अगर स्वाद चखा दिया जाए
0: जी,
1: तो श्रोताओं को मजा आ ही जाएगा। तो
0: ऐसा क्यों कहा हमने?
1: मैं आज आपको एक स्पेशल आइसक्रीम के बारे में बताना
0: जी जी
1: चाहती हूँ
0: जी
1: कविता जी।
0: जी बताएं।
1: तो आप भी कहेंगे कि ऐसी आइसक्रीम भी होती है क्या? तो मैं आज बात करूंगी एक ऐसी आइसक्रीम की जिसमें हम देखेंगे कि आइसक्रीम से हम क्या कुछ सीख सकते हैं।
0: जी
1: तो सबसे पहले आइसक्रीम से आता मैं पहला शब्द आता है आ,
0: आ
1: और आ से है आत्मविश्वास।
0: जी जी
1: तो हमारी जिंदगी में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल है, और जो आत्मविश्वास से भरपूर ऊर्जावान बनता है वो
0: जी
1: जिंदगी में अपने सारे कार्य स्वावलंबी से आराम से कर सकता है।
0: जी
1: इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड है ई, ई से हम कहेंगे ईमानदारी। उसके बाद है स, और स है सकारात्मक सोच,
0: जी
1: पॉजिटिव बनिए हमेशा। फिर है क्री, क्री से होता है क्रियाशील, तो हमेशा क्रियावान बने रहें, बिल्कुल। और म से मेहनत, मेहनत करोगे तो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ोगे।
0: जी, और म से मन भी है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और ये मन कहता है कि आगे बढ़ा जाए खूबसूरत गीत की तरफ।
1: बिल्कुल।

0: कविता जी, अभी
1: जी नीता
0: हमने
1: जी
0: श्रोताओं को आइसक्रीम खिलाई, तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे विनम्रता से बोलना, दूसरों का आदर सम्मान करना, कभी कोई गलती हो जाए तो उनसे माफी मांग लेना और शुक्रिया अदा करना। ये
1: जी
0: कुछ बातें ऐसी हैं जो हर किसी के दिल पर राज करती हैं।
1: बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और इसमें एक बहुत कीमती बात को जोड़ देना चाहते हैं हम, वो ये है कि आपको अगर खुद की अहमियत को पहचानना है तो उनकी आंखों में देखो, जिनकी आंखों में आपके लिए प्रेम है और उससे भी ज्यादा आपके खो जाने का डर
0: अरे वाह।
1: है ना, उन आंखों में अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सही मायने में हम क्या है। मायने ये नहीं रखता कि कौन आपको पाने के लिए चाहता है, मायने ये रखता है कि कौन आपको खोने से डरता है।

0: गाने चल रहे हैं नए
1: हाँ
0: नवेले,
1: बिल्कुल.
0: और ये जो है नमस्कार का सफर है, लेकिन जिंदगी के सफर की हम बात करें मीता जी, तो हम बहुत डरे डरे से रहते हैं। न जाने क्यों आज मैं जी ही नहीं पाते, कल की चिंता सताती रहती है, अगले
1: हमेशा.
0: पल के बारे में सोचते रहते हैं ना।
1: हाँ
0: तो बहुत सारे लोग जो हैं, विद्वानों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, जो अपने दोस्त हैं उन्होंने भी कहा है कि जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है ना। ना कल में था ना कल में है, जीवन मात्र इसी पल में है, पर हम न जाने क्यों फिर भी उलझे रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा. इस पल को जिए हम, क्योंकि जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें अगर यदि कोई अंगारा भी फेंक देना तो वो खुद ब खुद ठंडा हो जाए.
0: हम सरोवर में अंगारे क्यों देखने लगे भला, हम तो पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे चिनारों के वृक्षों की परछाई देखेंगे, और वहां से जो उगते हुए सूरज की रोशनी है वो कितनी चमकदार होती है, बिल्कुल आपके मुस्कान की तरह।
1: अच्छा,

0: कविता जी,
1: जी
0: जब
1: माता
0: हम
1: जी।
0: बात पहाड़ों की कर रहे थे, तो इस गर्मी में इच्छा होती है मन को सुकून देने वाली जगह जाएं, जहाँ ठंडा ठंडा मौसम हो और झील के बदलते हुए नीले रंग के साथ ठंडी हवाएं और शांत वातावरण हो, प्रकृति
1: प्रकृति
0: से हम जुड़ें और जहाँ जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जुड़ना चाहते हो तो प्रकृति का करीब को करीब लाओ, है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: और झील का किनारा तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आपने ये कहा कि जिंदगी को खूबसूरत बनाए, तो इसके लिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हम कहते हैं कि रोज शाम होती है, रोज सूरज ढलता है और फिर से दिन का उजाला और सूरज निकलता है। हम
0: हाँ
1: इसके पीछे की एक बहुत ही मजबूत बात भूल जाते हैं कि रोज शाम सूरज ढलता है तो रोज शाम हमारी जिंदगी भी ढलती है। तो हमने जो नहीं किया वो कर लेना चाहिए, और जिंदगी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो प्यार
0: हाँ
1: से जिए,
0: हाँ
1: प्यार बांटे और मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ रहें, इसी से जिंदगी खूबसूरत बनती है।

0: श्रोताओं,
1: गीत नए नवेले जो हैं वो कहते हैं कभी अलविदा मत कहो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम केवल नए नवेले गीतों की बात करते रहेंगे तो हमारा जो नमस्कार प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा, है ना?
0: बिल्कुल
1: तो हम उस तरफ भी बढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम बनता है, क्यों
0: बिल्कुल।
1: मीता
0: तो
1: जी?
0: 9 बजने वाले हैं, तो अब हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में ठीक 9:10 पर।

यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के

0: अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोडमैप देगी।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
2: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है, जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भीलड़ी जालौर पाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। यह ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाओ, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनवाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, जयपुर गांधीनगर स्टेशन

0: बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी, इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल, डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परम्परा भी रही है।
1: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसीलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बनी से हम बहुत सुरक्षित स्थिति में। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी का आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम है निपट जाएगा, उन्हें सामान्य स्थिति।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
2: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां एआई तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद श्रोताओं, फिर से स्वागत है आपका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
5: और नमस्कार, मैं हूं कविता।
4: और मैं मीता मुल्तानी।
5: और समाचारों के बाद का दस्तूर है कि हम एक गाने से अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो एक प्यारा सा गाना पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इतिहास में क्यों है खास आज की तारीख।

0: तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या खास दर्ज है आज की तारीख में। आज ही का दिन 1819 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर पहली बार साइकिल देखी गई, जिसे स्विफ्ट वॉकर कहा जाता था। आज ही के दिन 1840 में न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया।
1: 1881 और दिन था आज का, क्लेरा बार्टन द्वारा वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी।
0: और 1904 में आज के दिन पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
1: आज के दिन यानी 21 मई 1927 को अमेरिकी पायलट चार्ल्स लिंडबर्ग ने स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस नामक विमान से न्यूयॉर्क से पेरिस तक की अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली नॉन स्टॉप सोलो उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की थी आज ही के दिन।
0: आज के दिन 1960 में एक दिग्गज भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता, पार्श्व गायक मोहनलाल का जन्म हुआ और इन्होंने खूब अच्छी अच्छी 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए।
1: वर्ष 2003 और दिन था आज का, जेनेवा में 190 देशों ने तंबाकू के विरुद्ध वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किए थे आज ही के दिन। वर्ष 1929 21 मई को भारत की पहली एयर कार्गो सेवा कोलकाता से बागडोगरा के बीच शुरू हुई थी।
0: और वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया और ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी।
1: सुष्मिता सेन ने आज ही के दिन जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, तो श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया ये फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आज है 21 मई का दिन और जैसा हमने कहा ना कि हम कहते हैं कि एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार करें, तो इसी तरह से संवाद और विकास के लिए आज हम मना रहे हैं सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। यह दिन दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाने और शांति तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मित्रों, इसका मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता के महत्व को गहराई से समझना और विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में इस दिन की स्थापना की थी और इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2001 में सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने

0: 2001 में सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के बाद हुई थी। दोस्तों, यह दिन हमें यह सिखाता है कि दुनिया के अधिकांश संघर्षों को आपसी बातचीत और सांस्कृतिक समझ से सुलझाया जा सकता है। इस दिन दुनिया भर में संगीत, नृत्य और कला प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। इस संबंध में कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन होता है। लोग विभिन्न संस्कृतियों के खान पान और पहनावे का भी आदान प्रदान करते हैं। और साथ ही आज हम 21 मई के दिन ही मना रहे हैं आतंकवाद विरोधी दिवस।
1: जी, वैसे तो कहते हैं ना कि आतंक की एक ही परिभाषा है, डर और भय। आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो पूरे भारत में आज ही के दिन 21 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो आज दुनिया जिन समस्याओं का सामना कर रही है, हम और आप सभी उसी में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम समस्या है आतंकवाद। आतंकवाद के कारण हजारों लोगों को दुनिया में अपनी जान गंवानी पड़ी और भारत समेत कई देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ये एक ऐसी समस्या है जिसे निपटने के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया है। तो आज के दिन को समर्पित करने के साथ साथ हम संकल्प भी लें कि आतंकवाद का विरोध, यानी उन भावनाओं का विरोध जो नफरत पैदा करती है, उस डर का विरोध जो आदमी को आदमी से जुदा करता है, और उस भय का विरोध जो हमने कहीं आपसी विश्वास में खो दिया है, पड़ोसी से पड़ोसी का भय या आपसी रिश्तों में भय उसे खो दिया है, उसे फिर से पुनर्जीवित करना होगा। और ये सच्चे मायने में आतंकवाद विरोधी दिवस के प्रति हमारा समर्पण होगा, है ना।
0: बिल्कुल
1: और ऐसे कई कृत्य हैं जो सामने आते हैं जिसमें जान माल का नुकसान होता है और लोगों को कई तरह की हानि उठानी पड़ती है, लेकिन उसका कारण भी कहीं ना कहीं हम है, क्योंकि हमने खुद को एक सीमा में बांध दिया। हमने अपनी सीमाओं में खुद को कैद किया और साथ ही साथ अपने विश्वास को भी सीमित कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो हमें अपने विश्वास के जो बॉर्डर है उसे बढ़ाना होगा। अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरों के साथ इंसानियत क्या है ये समझाकर उसे जुड़ना होगा। और फिर से एक बार हमें उन दिनों को जीना होगा जिसमें भय, आतंक और अविश्वास जैसी कोई चीज ही नहीं थी।
0: बिल्कुल। और इस दिन को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज ही के दिन यानी 21 मई को वर्ष 1991 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु की में के श्री परम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त वे एक आम सभा को संबोधित करने जा रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए रास्ते में बहुत सारे प्रशंसक थे और इसी प्रशंसकों की भीड़ में उन्हें फायदा उठाते हुए किसी लिट्टे के आतंकवादियों ने उन इस घटना को अंजाम देते हुए उनकी हत्या कर दी। तो राजीव गांधी बलिदान दिवस को ही हम आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में आज के दिन मनाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और साथ ही आतंकवाद का विरोध करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
1: या ये जो नाम है ये इसीलिए गिनवाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, जन कल्याण में जिया, और इसीलिए भारत भारत है।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो।

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: दोस्तों, दुनिया भर में एक बात बहुत ही कॉमन है और वो है हिंदुस्तानियों की चाय पीने की आदत। कुछ इसे लत कहते हैं तो कुछ जिंदगी की खुराक, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मेहमान नवाजी की प्रतीक इस चाय का भी अपना एक विशेष दिन आता है।
1: वैसे सच कहें तो चाय हमें टाइम पास का सबसे खूबसूरत तरीका देती है। ऑफिस की मीटिंग हो, शादी का रिश्ता हो, चाय पर चर्चा के बिना बात ही नहीं बनती।
0: बिल्कुल।
1: और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर असम के बागानों तक लाखों हाथ इस प्याली के पीछे लगे रहते हैं। तो चाय का घूंट पिला रही है
0: बिल्कुल। तो
1: या चाय
0: हम
1: पर
0: बात कर
1: चर्चा
0: रहे
1: कर
0: हैं
1: रही
0: कविता जी कि
1: है।
0: आज है 21 मई और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे। इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि करीब 2 साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब 21 मई को मनाया जाने लगा है।
1: ऐसा क्यों
0: हैरान हो गए ना?
1: जी?
0: आखिर माजरा ये है कि इसके पीछे भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। भारत ने चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई, लेकिन भारत सरकार ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का 21 मई का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का सीजन जो है वो
1: मई
0: मई से
1: से शुरू होता
0: शुरू
1: है। बिल्कुल सही कहा है। और ये तो कहते हैं ना कि कई सारे परिवारों के जो है जीवन यापन के लिए भी एक प्रमुख साधन भी है।

0: और जो कम से कम विकसित देश हैं उनके गरीब देशों में या कह दें तो वहाँ आय निर्यात राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है, चाहे श्रम गहन क्षेत्र के रूप में, विशेष रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रोजगार भी देता है ये चाय।
1: हाँ
0: और सिर्फ ये नहीं, चाय विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फैसलों में से एक है।
1: बिल्कुल
0: और ये भी कहते हैं कि जिंदगी तंग लगे तो चाय बना लो, दिल में जंग लगे तो चाय बना लो, क्योंकि मसले हजार सही पर सुकून का इलाज एक ही है, चाय बना लो। हम सुनते हैं एक गाना चाय के साथ।

0: तो दोस्तों आज है गुरुवार, है ना।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: गुरुवार का हमारा खास सेगमेंट होता है जो हम पर्यावरण की ओर हमें ले जाता है। उसका उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण किससे प्रभावित हो रहा है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें आज का विषय है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है जो महासागर की लहरों की गति से उत्पन्न होती है।
1: यह महासागर की लहरों से चलते हुए पानी की सतह पर बहने वाली हवा द्वारा निर्मित होती है। जैसे ही हवा अपनी ऊर्जा पानी को प्रदान करती है, यह लहरें उत्पन्न करती है जो महासागर में लंबी दूरी तक फैलती हैं। तरंग ऊर्जा परिवर्तक WEC इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और लहरों की गति को बिजली में परिवर्तित करते हैं।
0: हवा जब खुले पानी की सतह पर चलती है तो घर्षण के माध्यम से पानी में ऊर्जा स्थानांतरित होती है और जिससे लहरें बनती है। और इस ऊर्जा के कारण पानी छोटी छोटी लहरों के रूप में गतिशील होता है और फिर बड़ी लहरों में तब्दील हो जाता है। और यही पानी के उठने और गिरने या दबाव में बदलाव का उपयोग करके टरबाइन और जनरेटर चलाए जा सकते हैं और इससे बिजली बनती है। और ये ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला एक स्रोत है।
1: बिल्कुल, आज के समय में सबसे बड़ा जो है हमारे सामने एक संकट है, जलवायु संकट। आज यह सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं, जिनमें मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जैव विविधता का क्षरण भी शामिल है। विश्व को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से हटकर एक अधिक टिकाऊ, कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्रणाली की ओर तेजी से और व्यापक ऊर्जा परिवर्तन करना होगा।
0: तो नाम फिर से यहाँ याद आता है, तरंग ऊर्जा, जो बिजली उत्पादन के लिए समुद्री लहरों की शक्ति का उपयोग करती है। एक आशाजनक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जिसका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि उसमें जो वेव्स हैं वो प्रभावित होती हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनके आवास, उनका सूंघने देखने का जो देखने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें सौर, पवन, जल विद्युत और तरंग ऊर्जा सहित कई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना होगा। तब जाके हम ये तरंग ऊर्जा का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि
1: यह नवीकरणीय है, प्रदूषण नहीं फैलाती है और दिन रात बिजली प्रदान कर सकती है। लेकिन तरंग ऊर्जा की कुछ समस्याएं भी हैं। ये महंगी है, इसका रखरखाव बहुत ही कठिन है और यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है।
0: तो इस पर काम तो अभी चल ही रहा है,
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: सारे विद्वान सोच रहे हैं और हम तो शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा।

0: श्रोताओं, आज हम याद करते हैं उन महापुरुषों को जिनका आज जन्म दिवस है। और सबसे पहले हम याद करते हैं अपने समय के अनूठे व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी को। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा था और अपनी पैनी कलम से बड़ी साफगोई के साथ उन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। शरद जोशी जी पहले व्यंग्य नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से खिन्न होकर व्यंग्य लिखना शुरू किया। वे भारत के पहले ऐसे व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकल्लस के मंच पर 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से भी अधिक ज्यादा लोकप्रिय हुए।
1: उन्होंने कहा कि लिखना मेरे लिए जीवन जीने की एक तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देखकर सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि चलो, इतने वर्ष तो जी लिया। शरद जी ने अपने जीवन काल में कई सारे व्यंग्य संग्रह, नाटक, दूरदर्शन धारावाहिक, जैसे ये जो है जिंदगी,
0: विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के और ये दुनिया गजब की
1: जी, और कई सारी फिल्में उनके नाम हैं जिसमें क्षितिज, छोटी सी बात, उत्सव, सांझ को आंच नहीं, ये कई सारी फिल्में हैं जिन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। 1990 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया।
0: साथ ही आज हम याद करते हैं सर सुंदर लाल को, जो प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। देश के विकास के लिए, औद्योगिकीकरण और शिक्षा प्रसार को उन्नति के लिए आवश्यक समझने वाले सर सुंदर लाल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सुंदर लाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे।
1: और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जो है, राष्ट्र के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पेड़ों को काटने की बजाय पेड़ों को लगाना अति महत्वपूर्ण है ना?
0: जी हाँ,
1: और
0: हम बात कर रहे
1: ये
0: हैं
1: कहा है
0: सुंदरलाल
1: सुंदरलाल
0: बहुगुणा
1: बहुगुणा
0: ने,
1: ने जी।
0: जिनका

0: आज स्मृति दिवस है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। इन्हें वर्ष 1984 के राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है।
1: 2001 में पद्म विभूषण से भी आपको नवाजा गया और इनके कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इन्हें पुरस्कृत किया और कई सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया। और यहाँ हम एक और नाम को याद करते हैं, गामा पहलवान।
0: बिल्कुल,
1: विश्व के एक ऐसे पहलवान जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई कुश्ती हारी नहीं, और शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी होगा जिसे रुस्तमे जमा पहलवान का नाम न सुना हो। गामा पहलवान भारत में एक किंवदंती बन चुके हैं और इन्हें शेरे पंजाब रुस्तमे जमा कहते थे और द ग्रेट गामा भी इन्हें कहा जाता था।
0: गामा विश्व के एक मात्र पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती कभी नहीं हारी और पूरे विश्व में भारत का नाम उजागर कर दिया। 15 अक्टूबर 1910 में गामा को विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप में विजेता घोषित किया गया। अपने पहलवानी के दौर में गामा की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय थीं कि साधारणतः लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वास्तव में कोई ऐसे पहलवान भी हुए हैं।
1: और ये भी कहा जाता है कि ये जो महानतम पहलवान हैं, इनकी पटियाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में इनके कसरत करने के उपकरण आज भी रखे हुए हैं और एक पत्थर का गोल चक्का है जिसे गले में पहनकर गामा बैठक लगाया करते थे और उसका वजन लगभग 95 किलो है।
0: अच्छा
1: जी, तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ गाने के लिए रुकते हैं और गाना देखते

0: न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ, हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही दिन भर की थकन खत्म होती है और रात की 11 बजती और लगता है कि अब सोने चले, तब दिमाग में एक कमेंट्री सी चलती है और क्रिकेट सा चलने लगता है कि आज क्या हुआ, आज हम ये नहीं कर पाए, आज हम वो नहीं कर पाए, सुबह हमको ये करना है, सुबह हमें वहां जाना है। मतलब नींद को हम खो देते हैं। नींद कोई लग्जरी नहीं, ये बॉडी को फ्री करने वाला रिपेयर सेंटर है जनाब, तो इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि आपका फोन, आपकी अनावश्यक सोच, आपके टेंशन, चाय कॉफी जैसी ड्रिंक्स, ये नींद का शटर डाउन कर देती है। तो नींद को आप अच्छे से लें, ताकि
1: बिल्कुल,
0: सुबह फ्रेश उठेंगे।
1: तो नींद 90-90 मिनट के चक्कर में चलती रहती है। सुबह 6 बजे उठना है तो 11 बजे सो जाओ,

0: 12:30 बजे, बीच में 12 बजे सोए तो 90 मिनट का चक्र टूटेगा, सुबह लगेगा।
1: जैसे कोई हम जंग के मैदान से आए हैं, है ना। तो सोने का टाइम फिक्स करो, उठने का टाइम खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। गहरी नींद, सही नींद बेहद जरूरी है। और अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं समापन गीत की तरफ।

0: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपने दोस्त मीता मुल्तानी
1: और कविता को दीजिए अनुमति। नमस्कार,
0: नमस्कार।

अभी आपने सुना नमस्कार कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 10 सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए सुने लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में पहली रचना कोहिनूर लंगा पार्टी की ओर से।

आप सुन रहे थे सामुदेवी कलावंत को। आइए सुनते हैं लोक संगीत में यह आखिरी रचना नेक मोहम्मद के स्वर में।

इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस समय दिन के 10:30 हो रहे हैं। आइए सुने अगला कार्यक्रम सुगम संगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति की आवाज़ों में, देव कोहली के बोल है, फिल्म का नाम है हिमालय पुत्र।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं LOC फिल्म से रूप कुमार राठौड़, सुखविंदर, हरिहरन, उदित नारायण और सोनू निगम की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल है, अनु मलिक का संगीत है।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ रहे हैं। कुर्बान फिल्म के इस गीत के साथ अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजें हैं।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बहारों की मंजिल। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में। रविंद्र रावल के बोल है, राम लक्ष्मण का संगीत है।

लिख दिया। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। जावेद अख्तर के बोल है, आर डी बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है 1942 एलो स्टोरी।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के साथ इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में, सांवर कुमार ताक के बोल है, राजेश रोशन का संगीत है और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं देव कोहली का संगीतबद्ध किया हुआ उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: मैं तो जोऊं रे सांवरिया थारी बाटी बेरा गण हरीरा नाम हरी।
1: लोक संगीत की पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र सिंह पंवार की आवाज में।

es de un dolor, morare mi chora maru, morare ya me

इस वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में अगली रचना आप सुनेंगे पारसनाथ पार्टी की आवाज में।

इसके साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का। बरसों इसे शराब

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। श्री शर्मा वहां भी कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री इसी गांव में प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रखना है। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पाली के राजीव गांधी स्मृति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा भी की। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध और दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज शाम से लागू होंगी। डेयरी ने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रूपये की वृद्धि की है। दूध के साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रूपये की बजाय 80 रूपये में मिलेगा। इसके अलावा 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रूपये की जगह 18 रूपये में मिलेगा। सादा छाछ पर 1 रूपये और नमकीन छाछ और लस्सी पर 2-2 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर

0: भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर की रात सबसे गर्म रही, वहां न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह जारी की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब गूगल जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक जैसी AI तकनीकों का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को एम आधार ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉक करने की अपील की है। बायोमेट्रिक्स लॉक होने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक स्वयं उपयोगकर्ता उसे अनलॉक न करे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सगला किसान भाई ने दिनेश राणा जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। कई फसल मायने सिंचाई ली अबार भी जरूरत है, इन सिंचाई मायने अपने जल संरक्षण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो आ बात है कि अपने कने पानी हमें होले होले कम होबा लागू है, जमीन मायने पानी ऊंडा गया परा है, कटे कई क्षेत्र मायने चौमासा मायने बिरका भी बढ़िया वह कोनी, फाचो जल भरण जी को है वो भी प्रोपर वेरे मायने नहीं हो पा रही है, कठे आपने लोगों की भी कमी रही है, क्योंकि आपा ज्यादा से ज्यादा खेती आपा करा, तो मान लो खेतरी जी की पालिया है उन्होंने आपा उचित प्रबंधन नहीं रख पा रही। जरूरत इन बात रही है कि अपने खेतरी जी की माटा है बढ़िया धोरा पाली आपा करन रखा चौमासों पहला, बारिश हुए और अपनो खेत भरी जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा महीने पानी जमीन में जावेला तो जी को पानी रो जल स्तर है उन महीने वृद्धि वेला, इन आगे आगे माटा रे पहाड़ आपा बढ़िया खाया करन रखा तो वो पानी खाई रे महीने भरीज रहे, तो उठे आड़े पाड़े जितना भी दरकत है अपना वृक्ष है वे अच्छी ग्रोथ करेला, और इनमें आपा एक नुओ नवाचार भी कर सका कि अपने जी की माटा है उनरे महीने महीने बढ़िया फलदार जी का वृक्ष है वे भी आपा चोप सका बा सका, हाथे जी का व्यवसायिक और नकदी उत्पादन अपन देवे वे रूकड़ा आपा लगा सका। कई किसान भाई तो आपने खेतरी माटा रे आड़े पाड़े नींबूरा पेड़ भी लगा रखा है, अनारा पेड़ भी लगा रखा है, जटे पानी कम है वटे किसान भाई अपने कुमटियारा भी पेड़ लगा रखा है और कुमटिया सो गूंदरो को उत्पादन है वो खूब हुए और मार्केट मायने एनर्जी की मांग है वह भी लगातार बनोड़ी रिया करे। किसान भाइयों आपसे बातचीत भड़क करा हमें सुना बढ़िया सो और गीत।

पर आजकल देखा कि किसान भाई भी समझ रहे आधार माते पहले सु ध्यान कर ले के भाई माने ट्यूबवेल महीने बेरा महीने वो इतो इस पानी है और इन सु इतना से तेरह महीने सिंचाई हो सके तो अटे किसान भाई आप बढ़िया फवारा विधि सु सिंचाई करे और फवारा महीने भी खास तौर से ध्यान रखनो रात्रि बगत है ठाडा पोर बगत महीने आप सिंचाई करा वो पानी आपने ज्यादा काम है आ जावे ज्यादा से तेरह महीने सिंचाई ले सके यूनिक आप तावड़ो तेज हुए दोपहर बगत महीने अटने रेत पानी तपे और वट आप सिंचाई करा तो पानी की जी की खपत है वह भी ज्यादा हो सके और समुचित रूप रे महीने आप

सिंचाई करा, जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में पानी आपा फसला ने देवा तो फसला री जी की ग्रोथ है वह भी अच्छी होवे। साथ साथ फसला रे महीने जो खरपतवार है वो आपने टेमो टेम ले लेना चाहिए। नित्र कहीं वे के जो पोषण है मिट्टी री जी की उर्वरा क्षमता जी की है वह सगली वाणे खरपतवार में जाती रहे, जिकी फसल आपा ले रखिया वह कमजोर हो जावे तो उनसु आपनो जिको उत्पादन है वो भी कम होवा लाग जावे। किसान भाइयों बातचीत घनी ठावनी चाहवा कृषि जगत प्रोग्राम रो जिको बगत है वो पूरो बेरियो है। आपरे साथी दिनेश राणे जाने सीख दिराओ। राम राम, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही साथ FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत प्रोग्राम नारी वाटिका।

0: लकीरें अपनी किस्मत की खुद ही बनानी पड़ती है, चिरागों की तरह रातें जागनी पड़ती है।
1: बैठे बिठाए नहीं मिलती मंजिल किसी को, कश्तियों को भी लहरों से बाजी लगानी पड़ती है।
0: नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
1: समीना का प्यार भरा नमस्कार।
0: आज आज के पूरे प्रोग्राम की परिकल्पना की है सफलता चारण ने।

0: समीना, आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो रास्ते में एक ज्योतिष बैठे थे। कई लोग हाथ फैलाए पूछ रहे थे, बाबा तकदीर में सरकारी नौकरी है या नहीं, बाबा क्या अमीर बनना लिखा है या नहीं। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये जो हमारी तकदीर है, ये ऊपर से एकदम फाइनल प्रिंट होकर आती है या फिर इसे हम रोज सुबह उठकर अपने हाथों से लिखते हैं।
1: सच कहा तुमने कि फाइनल प्रिंट होकर आती है या नहीं आती है ना। सच बताऊं तो इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए जिंदगी एक जिंदगी है, अभी इस तरह से है कि कार का मॉडल है ना, तो रास्ता कैसा है, पथरीला है, हाईवे है, ये सब तो शायद उस कार को देखने से पता चलेगा या तकदीर ने तय कर दिया है ना। लेकिन उस कार को चलाना कैसा है, गड्ढों से बचाना कैसा है ना, स्टेयरिंग व्हील को किस तरफ मोड़ना है, ये पूरी तरह से आपका कर्म तय करता है। अगर हम सब कुछ तकदीर पर छोड़ दें और फिर बात वैसी हो जाएगी कि एग्जाम की तैयारी तो कुछ नहीं की पर भगवान जी पास करा देना, ऐसे तो नहीं चलता है ना।
0: इसलिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हाथों की लकीरों पर मत जा ए गालिब, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते।
1: क्या बात है, भगवान ने हमें एक कोरा कागज दिया और कर्म की कलम दी है और अब आपके ऊपर है कि आप उसे पर अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं या सिर्फ बहानों की लिस्ट। आपको इस बारे में क्या सोचते हैं?

0: क्या नहीं सोचते, ये सब कुछ आप अपने आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। आप तकदीर को मानते हैं या सिर्फ हाथों की बनी बनाई लकीरों को, ये सोचना आपके ऊपर निर्भर करता
1: और
0: है।
1: समीना, जब हम रेखाओं की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल हाथ की लकीरें नहीं, बल्कि हमारे जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, हमारे जीवन में रिश्तों का ताना बाना है, संघर्ष है, उम्मीदें हैं और अनुभवों की भी वो बहुत सारी लकीरें हैं जो परिवार के अंदर, परिवार के लोग और विशेष रूप से महिला के व्यक्तित्व को गढ़ती है।
0: बिल्कुल, जब हम रेखाओं या लकीरों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ हाथों की लकीरों पर या हाथों की रेखाओं पर चला जाता है। लोग कहते हैं कि इन लकीरों में किस्मत लिखी होती है, लेकिन आज जब हम नारी वाटिका में इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो हाथों की लकीरों की ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी उन अदृश्य रेखाओं की भी बात करेंगे जिन्होंने एक महिला या एक व्यक्तित्व को गढ़ा है।
1: बिल्कुल, परिवार के अंदर एक महिला अपनी मेहनत से, या परिवार के बाकी भी जो सदस्य हैं, यूथ है, वो अपनी मेहनत से, अपने हौसले से, अपने जज्बातों से हर रोज़ खुद को लिखते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन को कर्म रूपी लकीर से मांझते रहते हैं। और वो रेखाएं बनती है, बिगड़ती है, फिर नई बनती है।
0: बिल्कुल
1: कभी चौके चूल्हे से शुरू होकर आसमान तक वो रेखाएँ जाती है और कभी अपनों की खुशियों को समेटते हुए एक खूबसूरत दायरा बनाती है।
0: हाँ, तो चलिए आज मिलकर टटोलते हैं जिंदगी के इन्हीं रंगों को।
1: कि हाथों की लकीरें बड़ी, तदबीर बड़ी या तकदीर बड़ी।
0: बिल्कुल।

0: इन हथेलियों की लकीरों में छुपा एक जहान है, कभी ये ममता की छांव तो कभी ऊंची उड़ान है।
1: मत आंकना इन्हें कमजोर, सिर्फ कंगन देखकर यही हाथ इस बदलते दौर की असली पहचान है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये जो पहचान है, ये जो लकीरें हैं, ये हमारी पहचान बनती है, महिला के हाथों की वो लकीरें जो कि इनको संवारने, परिवार को संवारने में घिसती है, लेकिन साथ ही आत्मनिर्भरता की नई इबारत भी लिखती है। चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो या बाहर का काम, ये रेखाएं थकान नहीं बल्कि ताकत की प्रतीक होती हैं।
1: और दायरे और मर्यादा की रेखा की बात करें तो समाज में अक्सर महिलाओं के लिए कुछ रेखाएं खींच दी जाती है, लेकिन आज की महिला उन रेखाओं को लांघती नहीं है, बल्कि मर्यादा में रहकर अपने सपनों को एक ऐसा नया सर्कल देती है जिसमें उसका पूरा परिवार, उसके अपने सपने दोनों ही बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रहते हैं।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ में जब हम लकीरों की बात करते हैं, तो रिश्तों की डोर भी है वो एक लकीरों की तरह से बंधी होती है। एक औरत माँ, बेटी, बहन, पत्नी और दोस्त के रूप में जितने रिश्तों को जोड़ती है ना, वे जीवन की सबसे खूबसूरत रेखाएं बन जाती हैं।
1: और अक्सर देखो समीना, ये भी कहा जाता है विधाता ने जो लकीरें खींच दी है वो बदलती तो नहीं, पर सच तो ये है कि जब एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करती है, जब एक बेटी अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करती है, तो वो अपनी तकदीर की लकीरों को खुद एक नया मोड़ दे रही होती है। और देखो हमारी वाटिका की आज की खिली हुई धूप यही संदेश देती है कि जो कर्म करें और आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ दूसरों के लिए भी रास्ता बनाएं, और लकीरों के भरोसे बैठने की बजाय है कि हम अपने कर्मों की नई लकीरें खींचते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हौसलों के आगे तो तकदीर भी सर झुकाती है। कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत हो तो हाथों की लकीरों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। और किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है कि इन हथेलियों की लकीरों में छुपा एक जहान है। सच ही तो है, आज की जो नारी वाटिका है या हम जिन रेखाओं की आज बात कर रहे हैं, जीवन की रेखाओं की, वो सिर्फ एक औरत की हथेली तक सीमित नहीं रहती, उससे आगे बढ़कर बहुत कुछ नया जहान बनाती है।

0: हो तैयार, ये जग है रण तेरा। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी राजस्थानी में भी कहा जाता है कि कर्म री रेखा कट्टी कोनी, पन कर्म सुभाग जरूर बदले। यानी कि कर्म की रेखाएं जो लिखी है ना, वो अपनी जगह है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्मों और मेहनत से अपना भाग्य जरूर बदलता है। तो इसलिए हमें निरंतर अपने कर्मों पर फोकस करते रहना चाहिए। क्यों आशा जी, क्या कहना
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी व्यूज़ हमारी सखियों ने भी भेजे हैं। मधु बनर्जी लिखती हैं तकदीर बड़ी या तदबीर बड़ी के बारे में कि मैंने अंक ज्योतिष के ज्ञाता कीरो को काफ़ी पढ़ा है, और कीरो की दृष्टि से देखें तो उनका ज्योतिष कहता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसके विचारों के अनुरूप बदलती रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और उसके आगे वो लिखती हैं कि इसलिए आपका क्या विच आप क्या विचार करते हैं, इसका बहुत महत्व है। किस्मत को तो हमारे जो सद्विचार होते हैं या सत्कर्म मिलकर के बदलने की ताकत रखते हैं।
1: यानी कि अच्छा सोचते रहें, आप अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा और आपके कर्म में आ जाएगा। तो आपके विचार बदलेंगे तो आपके कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से हंसा विश्नोई लिखती हैं कि मेहनत और किस्मत में से मेहनत पर ज्यादा विश्वास करती हूँ।
1: अच्छा
0: किस्मत में क्या लिखा है यह हमें पता नहीं, लेकिन मेहनत के बल पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किस्मत में भी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं।
1: और ये आगे लिखती हैं कि ऐसा माना जाता है किस्मत हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही प्रतिफल है, और किस्मत कोई ईश्वरीय प्रदत्त भेंट या उपहार नहीं है। जन्म के समय जो किस्मत हम लाए हैं उसमें हम इस जन्म के कर्मों के द्वारा उसको बढ़ाते हैं या उसमें कमी कर सकते हैं। और आगे ये लिखती हैं कि किस्मत से हम अच्छे अवसर या सकारात्मक परिस्थितियाँ हम अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं।

0: लेकिन उनका उपयोग हम हमारे कर्मों के द्वारा ही कर सकते हैं। हमें भोजन भाग्य से मिल सकता है, लेकिन भोजन करना भी तो एक कर्म है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखती हैं। और इसी के आधार पर, इसी के साथ साथ में वो लिखती हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। आज का परिश्रम ही हमारे भविष्य की आधारशिला है, और उपलब्ध साधन और परिस्थितियों का उपयोग हम सकारात्मक दृष्टिकोण से और उचित दिशा में करके ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही है कि जो चीज़ें हमें आज प्राप्त है उनका उपयोग हमें ऐसा करना है कि वो भविष्य के लिए भी बची रह सके। तभी हम अपने कर्मों को सही तरीके से करेंगे, हम अपनी तकदीर तो बदलेंगे, साथ में दूसरों की तकदीर भी बदल सकते हैं।
0: और एक और व्यू भेजा है वंदना शर्मा ने। वो सोचती हैं कि न तकदीर बड़ी है न तदबीर बड़ी है। असल में तदबीर ही तकदीर की ड्राफ्टिंग करती है ना। यानी कि हम मेहनत करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हमारे अंदर लगन है, तो वो ही फिर तकदीर की ड्राफ्टिंग करती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारे कर्म हमारे साथ ज़रूर चलते हैं। अगर हमने हमेशा सबका दिल दुखाया, कभी किसी की हेल्प नहीं की, यानी हमेशा स्वार्थी बने रहे, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हम एक नंबर से ही सही हमारी जो मेहनत के हिसाब से फल मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल, इसी के साथ में हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे आड़े जरूर आते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तो हम अपने कर्म कुछ इस तरीके से करें कि हमारे कर्मों से दूसरों को भी फायदा मिले, और हमारी तो तकदीर संवरे ही, साथ ही साथ में हमारे जो साथ में हैं, हमारे अपने हैं, उनकी तकदीर भी बदल जाए। क्योंकि ये कहा जाता है कि खुद पर भरोसा है तो हम जो है अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, और यही हमारा अगला गीत भी कह रहा है।

शर्माए काहे, घबराए काहे।

0: समीना, जब हमारी कभी सुबह आंख खुलती है तो हम सभी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ये भी पालूं, वो भी पालूं, सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तरफ से 100% मेहनत की है पर नतीजा शून्य रहा?
1: ऐसा अक्सर होता है कि हम बहुत कोशिश कर लेते हैं, बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम प्रयास भी बहुत सारे करते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने बिल्कुल भी मेहनत की नहीं होती है ना अच्छा, हमें पता ही नहीं होता है, हम बिल्कुल बेफिक्र बैठे होते हैं, तभी अचानक से हमारी जो झोली में है वो खुशियाँ आ जाती है जिनके लिए हमने मेहनत नहीं की थी। तब मन करता है कि कोई तो ताकत है जो ऊपर बैठकर हमारा

0: रिमोट कंट्रोल जो है उसको संभाले हुए हैं, जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं।
1: और इस बात को तो सदियों पहले संत कबीरदास जी ने लिख दिया, कितने सीधे शब्दों में कह दिया था, गौर से सुनिएगा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए।
0: हाँ, कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी तसल्ली है। एक लाइन में कबीर जी कह रहे हैं कि जो होना तय नहीं है वह कभी होगा नहीं, और जो होना भाग्य में लिखा है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, है ना, कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। फिर हम इंसान बेकार की चिंताओं में क्यों घिरे रहते हैं। और ये कहते हैं कि कबीरदास जी तो ये कहते ही हैं, इसके साथ ही साथ तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि रामचरितमानस में कि किस तरह
1: पहले
0: से
1: पहले बना प्रालब्ध पाछे भयो शरीर, तुलसी ये अचरज भये मन नहीं बांधे धीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर।
0: सोचिए, हमारा शरीर मांस मज्जा का पुतला तो बाद में वजूद में आता है, विधाता हमारी किस्मत का पूरा चैप्टर पहले ही खुद से लिख देता है। जब विधाता ने आने का, पाने का और खोने का समय पहले ही तय कर दिया है, तो फिर इस छोटे से दिल पर इतनी चिंता का बोझ क्यों रखते हैं हम लोग।
1: सब कुछ उस पर ऊपर वाले पर छोड़कर खुद को शांत क्यों नहीं कर लेते। सच ही तो है सखियों, भाग्य के आगे बड़े बड़े राजा और ज्ञानी भी नतमस्तक हुए हैं। जो किस्मत में है वो सात समंदर पार से भी दौड़कर आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो हाथ में आकर भी फिसल जाएगा। तो अहंकार छोड़िए, फिक्र छोड़िए, और उस विधाता के लिखे विधान पर भरोसा करिए।
0: हाँ, क्योंकि हम उसी के बंदे हैं और उसी की दुनिया जो बनाई हुई है उसमें हम चल रहे हैं।

0: समीना जी, हम बात कर रहे हैं भाग्य की या हाथों की लकीरों की, यानी तदबीर या तकदीर क्या बड़ा है। तो अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, यूथ की बात करें, तो
1: तो
0: एक
1: उनमें
0: तरफ तो
1: जिगरा है
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: उनमें जिगरा है। और देखो, आज की जनरेशन एक अजीब दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो हमारी जो रील्स के फीड पर हसल कल्चर छाया है, काम करो, ब्रेक डाउन लो, फिर काम करो, और दूसरी तरफ ट्रेंड चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, यानी जो किस्मत में है वो यूनिवर्स खुद ला कर देगा। तो भाई, आज का युवा असल में क्या सोच रहा है, कर्म या भाग्य? तो जब बात करते हैं युवाओं से, तो क्या कहते हैं युवा?
1: हाँ, तो युवा उनसे अगर हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कर्म को मानते हो या किस्मत को, तो वो यही कहते हैं कि भाई सीधी सी बात ये है कि नो इनपुट्स नो आउटपुट्स, है ना। आजकल की युवा पीढ़ी कर्म पर भरोसा करती है। हम रात रात भर जाग करके, जो हमारे युवा हैं वो कोडिंग करते हैं, स्किल सीखते हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो प्लान करते हैं, और अगर वो बैठ जाए ना तो भाग्य में होगा, मिल जाएगा ये सोच करके, तो भाई ऑर्डर भी डिलीवर होने में टाइम लेता है ना। तो नौकरी तो दूसरी बात है, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, या जो वो सोच रहे हैं, जो उनके जीवन का लक्ष्य है, उनको पाने के लिए उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी।
0: और कर्म ही सब कुछ है, कई यूथ तो ये मानते हैं, लेकिन आज का यूथ सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने में यकीन नहीं रखता। इसे भाग्यवाद का नया रूप कह सकते हैं, जिसे हम मैनिफेस्टेशन या यूनिवर्स की टाइमिंग कहते हैं। कई बार 100% देते हैं, शत प्रतिशत देते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी रिजेक्शन मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तब हमें समझ आता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत है जो काम कर रही होती है। आज का युवा भाग्य के भरोसे बैठकर आलसी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं।
1: बिल्कुल, ये बात तुमने सही कही कि जो आज का युवा है वो भाग्य के भरोसे बैठ कर के आलसी नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है ना। तो आज का युवा ये कहता है कि जो है सिर्फ सोचने से या विश बोर्ड बनाने से सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म के बिना भाग्य का पहिया घूमता नहीं है, फिर बैलेंस कैसे बिठाना ये हमारे ऊपर है। तो युवा पीढ़ी जो है वो इन दोनों के बीच में संतुलन भी बना करके रखती है। तो कर्म कैसे हैं ये हमारी तैयारी है ना, और भाग्य को मानना हमारी स्वीकार्यता है। अगर कुछ हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फेल हो गए, शायद यूनिवर्स के पास हमारे लिए उससे बेहतर कुछ और प्लान है।
0: इसलिए कहा जाता है आज का यूथ जो सोच रहा है, अपने तरीके से जी रहा है, अपने तरीके से सोच रहा है, वो हर कर्म पूरी शिद्दत से करता है, लेकिन फल के मामले में वो डिटैच हो जाता है। तो कितनी ये बात खूबसूरत है कि आज की युवा पीढ़ी की सोच पुराने वाली लकीर की फकीर नहीं है। आज का युवा तो न अंधविश्वासी है और न भाग्यवाद से बंधा है, और ना ही वो पागलों की तरह सिर्फ दौड़ना चाहता है। आज के
1: बिल्कुल
0: यूथ के पास एक नया मंत्र है,
1: बिल्कुल
0: मेहनत अर्जुन जैसी करो और परिणाम को कृष्ण पर छोड़ दो, यानी यूनिवर्स पर छोड़ दो। कर्म आपका पावर हाउस है और भाग्य पर भरोसा करना आपका स्ट्रेस बस्टर। तो दोनों का जो कॉम्बो है, वो ही आज की जनरेशन को कूल और मजबूत बना रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे घर में भी कोई यूथ है और वो अपने भाग्य को मानते हैं, और तो हम इस प्रोग्राम से के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कर्म और भाग्य का बैलेंस रखना सीखिए, तो आप किसी भी तरह के तनाव या डिप्रेशन में नहीं। आज हम यूथ को देखते हैं जो अपने कर्म पर भी विश्वास करते हैं और उसके साथ में वो इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद में भी अगर उनको फेलियर मिलता है या वो कहीं रुक जाते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, है ना, उसी हौसले के साथ, उसी जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हैं, और फिर वो उसके जो परिणाम है उसको ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, यानी तकदीर के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाते हैं या कहीं ठहर जाते हैं। और इसी तरह से हम एक बात और भी करेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो आशा, हम बात कर रहे हैं भाग्य या किस्मत या फिर हमारी जो मेहनत है, कौन ज़्यादा बड़ा है? तो कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल हमें उसी समय हाथों हाथ तो नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजर्व करके रख दिया जाता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले है ना, एक इंटरव्यू देख रही थी, और उसमें मैंने देखा कि एक जो सोशल मीडिया पर जो है रील्स बनाने वाला एक जो कॉमेडियन था, उसने कुछ एक एग्ज़ाम दिया, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया, और उसमें वो एक नंबर से पीछे रह गया। जो मेरिट और कट ऑफ जो गई ना, उसमें वो एक नंबर से पीछे छूट गया।
1: अच्छा
0: और फिर उसने हिम्मत नहीं हारी, और वो क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था और उसको रील्स वगैरह बनाने का शौक ही था, तो उसने कहा मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली है, अब शायद मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा हुआ था, इसलिए एक नंबर से मैं पीछे रह गया। और वो फिर रील्स वगैरह बनाने लगा, तो सब घर परिवार के लोग, बाहर के लोग ताने मारने लगे, कहने लगे और मेहनत करनी चाहिए ये सब। लेकिन उसका जो मन कर रहा था, यानी मन का जो सिकंदर वो था, उसके मन में कहीं तसल्ली थी। और फिर यही हुआ, एक लंबे समय के बाद में, मतलब 8-9 महीने के बाद में, जब उसने जिस कंपटीशन एग्जाम का दिया था उसका रिवाइज रिजल्ट आया,
1: अच्छा
0: और कट ऑफ जो है वो एक नंबर पीछे आ गई,
1: क्या
0: यानी
1: बात है
0: उसका सिलेक्शन हो गया। और फिर वो एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट पर आज वो अपने काम कर रहा है। तो यानी उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि आपकी मेहनत से बड़ा जो है वो भाग्य भी होता है। अगर भाग्य में लिखा होता है तो आपका वो टल के कहीं पे भी नहीं जाएगा, मिलेगा जरूर।
1: आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और देखो ना, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ हमारी सारी समझ, हमारा सारा विज्ञान और हमारा सारा पैसा घुटने टेक देता है। हम ज़िंदगी की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन सच ये भी है कि लिखने वाले ने हमारी तकदीर में कुछ और ही लिखा होता है। तभी तो कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। और देखो, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में कि भयंकर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और पर खच्चे उड़ गए गाड़ी के, और तीन चार लोग मतलब जो गाड़ी के अंदर बैठे थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन उसमें से एक ऐसा शख्स निकला जिसको खरोंच तक भी नहीं
0: खरोच तक
1: आई,
0: नहीं आए,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो इनका डॉक्टरों इस बात का डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये सारी बातें ऊपर वाले के हाथ में हैं। जब तक उसका हाथ आपके सिर पर है, तब आपको मौत भी आती है तो वो दूर से ही गुजर
0: छू
1: जाती है।
0: करके गुजर जाती है, बिल्कुल यही सा कहा। और बहुत से लोग हैं जिनको अचानक से एक दिन सुबह उठते हैं, लॉटरी लॉटरी लग जाती है, या कुछ अचानक ऐसी चीज़ें, सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी उनको मिल जाती है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती है। किसी उस अकेले से पूछिए ना जो अकेला बैठा है, या एकांत में रहता है, या बहुत परेशान है, जिसकी बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, उस व्यक्ति के पास में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है और वो उसकी बातें सुन लेता है, उसके पास में 2 पल गुजारता है, तो वो भी उसके लिए एक तकदीर बनाने वाला पल होता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अचानक से मिलती हैं और वो हमारे भाग्य में पहले से लिखी हुई होती है।
1: बिल्कुल, हम इंसान तो सिर्फ मोहरे हैं, असली बिसात तो ऊपर वाले ने बिछाई है। हमारा कर्म हाथ में है, लेकिन हमारा भाग्य उस विधाता के हाथ में। इसलिए जो पल आज हमारे पास है, उसे खुलकर जिए और नाराजगी छोड़ें और मुस्कराते रहें, कर्म करते रहें।

0: तो जब हम बात करते हैं तकदीर और तदबीर की, तो आज की जो नारी है वो आधुनिक है और जागरूक भी है, और जो अपने फैसले की लकीर खुद खींच रही है। अब वो किसी और के लिखे मुकद्दर की मोहताज नहीं है, अपनी ही उड़ान का वो एक नया आगाज है।
1: हथेली पर भले ही धुंधली हो किस्मत की लकीरें, मगर बुलंद हौसलों का एक मुकम्मल साज है वो। बिल्कुल, तो ऐसे ही जज्बात और एहसासों के साथ में हमारी जीवन की रेखाएं भी जुड़ी होती है। और आशा, एक और रेखा होती है जिसके बारे में हम आज की आधुनिक नारियां जो हैं, आधुनिक महिलाएं हैं, और जो यूथ है वो भी सोचता है, वो ये है लक्ष्मण रेखा, है ना। लक्ष्मण रेखा की या एक लकीर की बात आए तो लक्ष्मण रेखा का नाम सुनते ही जहन में रामायण का प्रसंग याद आई जाता है। बिल्कुल, जो जहाँ मर्यादा और सुरक्षा के लिए एक लकीर खींची गई थी। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि आज के दौर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस रेखा के क्या मायने हैं?
0: असल में समीना, होता ये है कि ये लक्ष्मण रेखा हमारे भीतर छिपी वो ताकत है, वो आत्मनियंत्रण है, जिसे हम हर उस चीज़ को ना कह सकें जो हमारे लिए सही नहीं है, है ना। तो चाहे वो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला अस्वस्थ खान पान हो, हमारे मन को भटकाने वाले कोई नकारात्मक विचार हो, या फिर हमारा कीमती कीमती समय चुराने
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया की लत हो,
0: वाला
1: तो जब हम खुद के लिए एक सीमा तय कर लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को भी सही दिशा में मोड़ पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि किसी चीज़ को ना कहना बहुत मुश्किल है ना। जब सामने कोई लुभावनी चीज़ हो, मन करता है, हमारी फेवरेट कोई डिश है ना, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो हम उसके लिए अपने आप को रोक नहीं पाते। या फिर जब पढ़ाई या काम के बीच में आलस हमें घेर

0: लगती है, तब खुद को रोकना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन सखियों, असल हिम्मत और असली मानसिक ताकत उसी में है कि हम उस पूरे भटकाव को पूरे हक और गर्व के साथ में ना कहें कि ये नहीं, ये मेरे संकल्प की सीमा से बाहर है और मैं इसके लिए बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खींच करके तैयार रहूंगी कि मुझे ये नहीं करना है।
1: हाँ, और ना कहना किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने सुनहरे भविष्य और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाने जैसा है। शुरुआत में ये जो लकीर हम खींचते हैं अपने लिए और ये जो अनुशासन हम बनाते हैं अपने लिए, थोड़ा सा कड़क लग सकता है, पर यकीन मानिए यही जो डिसिप्लिन है हमें उन पछतावों से बचाता है जो सीमा लांघने के बाद हाथ लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो आज के इस सफ़र में जब हमने इतनी सारी रेखाओं की बातचीत की है, तो हम इस महफिल में हम सब मिलकर एक वादा करें, वादा खुद से करें कि हम अपने जीवन में एक ऐसे ही अदृश्य लक्ष्मण रेखा को खींचेंगे जो हमारे आत्मसम्मान, हमारी सेहत और हमारे लक्ष्यों की रक्षा करेगी।

0: जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम दौड़ते तो आज में हैं, लेकिन हमारी आंखें कल के नतीजों पर टिकी होती है। जब नतीजा मन मुताबिक नहीं होता तो उदासी घेर लेती है।
1: सदियों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़े थे, और यह वह कालजयी संवाद है जो आज भी हमारे जीवन को सबसे बड़ा हमारे जीवन का सच है।
0: हे केशव, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, मन भ्रमित है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? यदि अपने ही लोगों को खोकर विजय मिली तो उस जीत के सुख को का क्या मोल? मुझे इस कर्म का फल सिर्फ दुख और विनाश दिखाई दे रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता।
1: लेकिन कृष्ण मंद मंद मुस्काते हुए शांत स्वर में बोलते हैं, पार्थ, तुम आज भी खड़े होकर कल की चिंता कर रहे हो, तुम परिणाम के मोह में बंधे हो। सुनो अर्जुन, ये कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल की इच्छा नहीं करो, इसलिए तुम कर्मों

0: के फल की इच्छा को करोगे तो तुम उसमें फंसोगे, तुम्हारी उसमें आसक्ति बनेगी।
1: बिल्कुल, लेकिन माधव बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कैसे कर सकता है? यदि मुझे पता ही नहीं हो कि मेरी मेहनत का परिणाम क्या होगा तो मेरी प्रेरणा कहाँ रहेगी? क्या निष्काम होना उदासीन होना नहीं है?
0: नहीं नहीं, निष्काम होने का अर्थ उदासीन होना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुक्त होना है। जब तुम किसी कर्म को करते हुए उस फल से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में नहीं जीते, तुम भविष्य की उम्मीदों या हार के डर से बंध जाते हो। यही आसक्ति है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से।
1: आसक्ति से क्या नुकसान है?
0: तो इस संवाद में श्री कृष्ण समझाते हैं कि आसक्ति ही हर दुख की जड़ है। जब हम फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो क्रोध बढ़ता है, निराशा बढ़ती है और बहुत सारे दुखों का जन्म होता है। और यदि परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो भी जाए तो भी उसका खोने का डर रहता है, तो
1: वो हमें जीने नहीं देता। कर्म को अपना कर्तव्य समझ कर करो, फल को मुझ पर छोड़ दो, यानी भगवान पर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी ऊर्जा उस कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लग जाती है और वही सच्चा योग है। और फिर फल पर मेरा नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण केवल मेरे प्रयासों पर है और आसक्ति ही बंधन है और कर्म ही मेरा धर्म है।
0: तो ये संवाद हम सबके जीवन में, जब हम कर्म की बात करते हैं, लकीरों की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, तो ये जब संवाद याद आता है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, तो ये हमें यही सिखाता है कि कर्म करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। हाँ, भाग्य बड़ा है, भाग्य में अगर कर्म होता है तो ही हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म को छोड़ नहीं देना है। ये संवाद हमें यही सिखाता है। तो जो अर्जुन को सिखाया भगवान कृष्ण ने, वही आज मैनेजमेंट गुरु भी सिखा रहे हैं। फोकस करो अपने काम के ऊपर, है ना, अपने आउटकम पर फोकस मत करो। तो अक्सर हम परीक्षा के नंबरों में, नौकरी के प्रमोशन में, रिश्तों के नतीजों में इतना उलझ जाते हैं कि आज को जीना और ईमानदारी से काम करना भूल जाते हैं।
1: हाँ, क्योंकि आपको कर्म करना है क्योंकि वह आपके हाथ में। उम्मीदों को छोड़िए क्योंकि उम्मीदें जब टूटती है तो दर्द भी होता है। फल से मत जुड़िए क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। और जब आप बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के अपना शत प्रतिशत देते हैं तो काम बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। तो चलिए आज से नतीजों की फिक्र छोड़कर सिर्फ बेहतरीन कर्म को करते हैं।

0: तो समीना जी, ये जिंदगी एक रंगमंच है, हम सब इस ड्रामे में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। खुलकर हंसिए, दिल से रोइए, अपने उसे प्यार कीजिए, और जो भी किरदार आपको मिला है उसमें जान फूंक दीजिए, क्योंकि जब ये शो खत्म होगा ना और पर्दा गिरेगा, तो तालियां इस बात पर नहीं बजेगी कि आपका रोल कितना बड़ा था, बल्कि इस बात पर बजेगी कि आपने उसे निभाया कितने कमाल तरीके से था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि हाथों की रेखाओं में सिर्फ शगुन अपशगुन मत ढूंढिए, इन हाथों को फैलाकर किसी की मदद कीजिए, इन्हें उठाकर अपने सपनों के लिए उड़ान भरिए, क्योंकि असली किस्मत लकीरों में नहीं आपके इरादों में होती है। और आज के नारी वाटिका प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे फिर और बातें, कुछ और जज्बात लेकर के। और चलते चलते आपको नारी वाटिका की टीम से रूबरू करवाते हैं। HPT ट्रांसमिशन से हमारे सहयोगी रहे विक्रम सिंह भाटी व प्रेम किशोर सेन,
0: और कंट्रोल रूम से थे नरेंद्र सिंह राठौड़, FM से दिलीप सिंह परमार, और पूरे प्रोग्राम की परिकल्पना की थी सफलता चारण ने, और इसी के साथ आप तक प्यारे प्यारे गानों को, इस पूरे प्रोग्राम को पहुंचाया।

0: राजेंद्र जी ने, और इस प्रोग्राम पे एक बहुत प्यारी सखी मेरे साथ बैठी है, समीना जी।
1: और मेरे साथ बैठी है सखी आशा। तो
0: हम दोनों को दीजिए
1: इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नारी वाटिका। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक

0: सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और

उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात

0: दल में चार महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे।

0: और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नीलकुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन, यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
1: जी,
0: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम

0: साथी बनोगे? मेरे साथ खेलोगे?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
3: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते।

0: और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
1: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
2: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
1: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
2: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ।
1: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
2: बिल्कुल सही कहा अटकू।
3: इसे काटो। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
2: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
0: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
4: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
3: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है,
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
4: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
2: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ,
2: पेड़ लगाओ।
6: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश

0: को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एक प्रायोजित कार्यक्रम, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में ये सबसे पहले सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम

हेलो जी, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों. जी हाँ, आपका स्वागत है आज की शानदार सफर में. दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज दिन विशेष है म्यूजिकल कहानी. तो दोस्तों, चलिए शाम को शुरू करते हैं इस खास

0: गीतों के साथ। और आज के सफर में हम दो रेडियो बड़ीज आपके साथ जुड़े हैं। मैं आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल
1: और मैं आपकी अपनी माधवी पुरोहित। कई सारी बातें करेंगे और सुनेंगे ढेरों गाने इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: दोस्तों, वेलकम बैक। और ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी कूल वाइब्स के साथ आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि फ्रिज खोलते ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का दरवाज़ा खुल गया हो। और हाँ, और ऐसा हम नहाने के बाद भी लगता है कि जैसे हम मैराथन से भाग कर आए हों।
1: बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा आपने। और इन गर्मी के दिनों में हमें कई बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बार बार पानी पीते रहना और अच्छा खाना खाते हुए हमेशा अपना ध्यान रखना।
0: इसके साथ आपको एक सावधानी रखनी है कि जब आप धूप में निकलें तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें।
1: बिल्कुल। और बाहर का जंक फूड जितना हो सके उतना कम खाएं, ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल अवश्य करें।
0: तो दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में धैर्य और सावधानी रखना बेहद जरूरी है। आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी डालते रहें, और जो जानवरों के लिए पॉट रखे हैं उसमें भी पानी डालते रहें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो, जहां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे। दोस्तों, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये फीलिंग्स का नाम है। सुबह की फ्रेश स्टार्ट हो, दोस्तों के साथ गॉसिप हो या फैमिली के साथ प्यारी सी बातें, हर मोमेंट चाय के बिना अधूरा लगता है।
1: बिल्कुल, तभी तो हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि घर में मेहमान आए, चलो चाय बना लेते हैं। मूड ऑफ लग रहा है, चलो चाय पी लेते हैं। दोस्तों, जो चाय है हमारी कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, किसी भी गेस्ट का वेलकम करना हो या बारिश का मौसम हो, गर्मा गर्म चाय मूड फ्रेश कर देती है।
0: और प्रज्ञा, आज का दिन टी फार्मर्स और वर्कर्स के लिए मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए भी मनाया जाता है, जो दिन रात मेहनत करे हम तक चाय पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अपनी फेवरेट चाय का एक कप उठाइए और इन्जॉय कीजिए इंटरनेशनल टी डे।

0: दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी कोशिश भी दूसरों के अंदर हिम्मत जगा देती है। जी हाँ, जिंदगी में बदलाव हमेशा छोटे कोशिश से ही शुरू होता है। अगर हम सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाएं, तो वो कोशिश कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हर बड़ी समस्या का हल हो सकता है, चाहे वो छोटा सा ही कोशिश क्यों ना हो।
1: इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन अब मन हो चला है एक प्यारी सी कहानी सुनने का। इस कहानी का नाम है प्रयास करो तमाशा मत देखो।
0: एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपनी साधारण सी जिंदगी में खुश थे। सुबह खेतों में काम करना, शाम को चौपाल और रात को सुकून भरी नींद, बस यही उनकी दुनिया थी।
1: लेकिन एक गर्मी की दोपहर अचानक गांव के पास जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग धीरे धीरे पूरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में धुआं आसमान तक फैल गया। लोग डर गए।
0: हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई अपना सामान समेट रहा था, कोई बच्चों को लेकर भाग रहा था, तो कोई बस खड़े होकर तमाशा देख रहा था। सबको लग रहा था कि अब कुछ बचेगा ही नहीं।
1: उसी जंगल के पास एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसने देखा कि आग लगातार बढ़ रही है और कोई उसे रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा है।
0: वह तुरंत नदी के पास गई, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा और उड़कर आग पर डाल दिया।
1: वह बार बार यही करती रही। उसकी छोटी सी चोंच में बहुत कम पानी आता था, लेकिन उसके हौसले में बहुत बड़े थे। पास के पेड़ पर बैठा एक कौवा ये सब देख रहा था। वह चिड़िया का मजाक उड़ा रहा था और बोला,
0: अरे, तेरी छोटी सी चोंच में पानी से ये भयानक आग बुझ जाएगी क्या? तू मेहनत बेकार में कर रही है। चिड़िया ने बिना रुके जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मेरी कोशिश से आग बुझेगी या नहीं, लेकिन जब भी इस आग की बात होगी तो मेरा नाम कोशिश करने वालों में होगा, तमाशा देखने वालों में नहीं।
1: चिड़िया की ये बात कुछ गांव वालों ने सुन ली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अगर इतनी छोटी सी चिड़िया हार नहीं मान रही, तो हम इंसान होकर क्यों डर रहे हैं?
0: बस फिर क्या था, किसी ने बाल्टी उठाई तो किसी ने मिट्टी डाली, कोई नदी से पानी लेने गया, बस धीरे धीरे पूरा गांव आग बुझाने में जुट गया।
1: कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। पूरा गांव बच गया। उस दिन गांव वालों ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। किसी भी समस्या के सामने सिर्फ खड़े होकर डरना आसान होता है, लेकिन छोटा सा प्रयास भी बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
0: तो दोस्तों, जिंदगी में कई बार हालत उस आग की तरह होंगे जिन्हें देखकर हम सिर्फ कई बार डर जाते हैं, लेकिन छोटी से छोटी कोशिश भी उस आग जैसी मुसीबत को भगाने के लिए काफी है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आप शो को एंजॉय कर रहे अपने दो रेडियो बड़ीज के साथ, आरजे प्रज्ञा और आरजे माधवी के साथ।
4: बिल्कुल, और आज हम बात करेंगे हैंडमेड आइटम्स की, यानी वो चीज़ें जो मशीन से नहीं बल्कि प्यार, क्रिएटिविटी और मेहनत से हाथों से बनाई जाती हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, घर में रखे पुराने कपड़े या फिर कोई कांच की बोतल हो या फिर जैम या अचार का कोई जार हो, ये सब आजकल जो है आर्ट फॉर्म में सामने आ रहे हैं। जी हाँ, रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बढ़ते इस ट्रेंड के बीच हम पुराने सामान को हैंडमेड एंड होम डेकोर के आइटम की तरह यूज़ कर रहे हैं।
4: और प्रज्ञा, आजकल का यूथ भी हैंडमेड क्राफ्ट में काफ़ी एंट्रेंस ले रहा है। इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और कभी कभी ये हॉबी और अर्निंग का सोर्सेज भी बन जाती है।
3: जैसे कि कांच की जो बोतल है या फिर जार है, उसको पेंट करके हम कुछ नया डिज़ाइन डेवलप करके उसको सुंदर सा फ्लावर वास बना सकते हैं। या फिर कैंडल का भी आजकल मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, कुछ भी हो, आपको एक हैंडमेड आइटम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मेहनत लगेगी, पर उसकी डिमांड बहुत अच्छी है।
4: तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है तो उसे एक्सप्लोर करिए, क्योंकि हाथों से बनी चीज़ें सिर्फ सुंदर नहीं होती, उनमें दिल की फीलिंग्स भी होती है।

0: दोस्तों, बातों का सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, और आज का ये सफर बस यहीं तक। आज के शो में हम दो रेडियो बढ़िया से आपके साथ है। मैं रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल,
1: और मैं माधवी पुरोहित।
0: दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नई शाम में नई ढेर सारी चर्चाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, आसपास वालों का ख्याल रखें। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धीणेरी बाता, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब सुनिए कार्यक्रम धीणी दी बाता।
1: सुन रेडियो पर

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बात्या।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करू दाबू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीनेरी बात्या। काकी साहब, ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन से जुड़ी होरी सबली समस्या नो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बात्या कार्यक्रम।

0: इनेरी बातें
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करू दाबू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी हो रही सबली समस्या नो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्राइवेट है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनने वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: साथे साथे बंशी भाई रा भी
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: बंशी भाई
5: राम राम हरखू भाई राम राम
4: और राम राम सगला महाराज जी का भाई सुनने वाला है और हमारे सामने जी का चौपाल में बैठा है सगला भाई ने भी राम राम सा। और देखो सा गर्मी है बात तो देखो
5: जही चेत की है भाई।
4: हाँ और देखो दिनों दिन आज की गर्मी बढ़ रही है नी, मेरे पीछे विशेषज्ञ भी कहे और अपना जगह बुजुर्ग है माई थे वे भी आप कहे है के हरा जगह वृक्ष है भी कटन सु भी और तापमान है वो वृद्धि हुआ इरमाने तापमान तेज हो गया है, तो क्यों ना आपा भया एक एक पेड़ लगावा आप।
5: बहुत ही अच्छो विचार है ओ
4: है नी।
5: हाँ
4: देखो अब टाबरिया कहे के सोशल मीडिया पर से इंगला समाचार भी आवे के जे हमकी बिरखा वे नी तो एक एक दो दो पेड़ आपा लगावा और हर मान को जे एक एक दो दो पेड़ लगाए नी तो देखो राजस्थान है नी ओ हरो भरो हो जासी और आज की तापमान की समस्या है जी आप आने वाली पीढ़ी है वे थोड़ा कम भुगत सी।
5: सच्ची बात कहो कि भाई एक पेड़ है नी वो अनेक लोगों ने जीवन दिया करे।
4: बिल्कुल
5: है नी। तो फिर तो ई पेड़ रो जो महत्व आप सोचा नी उनको कितो बढ़ जावे।
4: बिल्कुल सर जिका पेड़ आप माहित लगाया बियारो कहन के लाभ आपने मिल रही है और आपा अगर लगा सा पीढ़ी ने मिल सी है नी, तो ये वास्ते आपा निस्वार्थ उपरार ओ काम कर सा तो देखो जगत रो भलो है और आपा रो भी भलो है। तो पेड़ तो आपने लगावनी है और जिगा पेड़ खाली लगावनी को नहीं ऐसा के ऐसा
5: एक उनरो खासो ध्यान भी रखना
4: ध्यान भी रखना है के पेड़ लगाए एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर आज हमने एक वृक्ष लगाया है नहीं सा लगाया नहीं भी पूरी जिम्मेदारी भी आपा नहीं उठावनी है। जद आप जिम्मेदार बन सा नहीं जद देखो जो पेड़ है नी वो पूरो पनप सी
5: भाई आज रो जो पेड़ है लगेड़ो वो आपने आने वाले टाइम रे मायने वो जीवन देसी।
4: बिल्कुल जीवन देसी सा और साथे साथे देखो तापमान जो बढ़ रहे हैं तो जे काम नहीं है ना अवश्य घर से निकलिया ना और जे काम है निकलना ही पड़े तो देखो कि खा पीर पानी पीर माथो ढकर ही आपने निकलना है
5: यार खूब भाई।
4: हाँ छोटो सा काम है कि आप आपरो ध्यान रखा सा। देखो चौपाल में बैठा जन आप हथाई तो कराई हाँ और चौपाल में अपर विशेषज्ञ भी पधारे।
5: हाँ
4: तो देखो आज बात कर ला पा भेड़ व बकरियां की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम। हाँ तब देखो आज विशेषज्ञ के बारे में बता दूं आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन। डॉक्टर मनोहर जी आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है और आपने भी करा राम राम सा
6: राम राम सा राम राम सा।
5: सेऊ पहली डॉक्टर साहब महाराज पशुपालक के उन्होंने आप आ बताओ कि भेड़ और बकरियां रा होड़ वाला प्रमुख रोग है किसे किसा है।
6: हरको भाई है बंसी भाई भेड़ और बकरियों में बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों के होने के कारण कई बार पशुपालकों को आर्थिक हानि भी होती है पशु मर जाता है। तो एक तो रोग होता है फड़किया रोग, एक होता है गलगोटू रोग, खुर गलन रोग है, एंथ्रेक्स है और ब्रुसेलोसिस रोग है। इसके साथ साथ जैसे बकरी का प्लेग रोग है जिसे पीपीआर भी कहते हैं, चेचक रोग है, खुरपका मुंहपका रोग है, ब्लू टंग रोग है, ऐसे बहुत सारे और भी रोग हैं जो पशुओं में होते हैं भेड़ बकरियों में होते हैं और कई बार अगर ध्यान नहीं देंगे तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है।
4: तो सेऊ पहला डॉक्टर साहब हमने बताओ कि फड़किया रोग कहीं है किया हुए और पशुपालक आपकी भेड़ और बकरियां ने इनसु किया बचावे।
6: हरको भाई और बंसी भाई ये भेड़ बकरियों में जीवाणुओं से होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भेड़ बकरियों के आंतों में और ग्रास नल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है यह है वहां पर वृद्धि कर लेता है और वहां पर जहर स्रावित करता है। उस जहर से भेड़ बकरियों की कई बार मृत्यु हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से तब होता है जब पशु को अचानक से चारे में परिवर्तन कर दें, उसके खान पान में अचानक से परिवर्तन कर दें, या पशुओं को जो बरसात फसल कटाई के बाद में पशुओं को अपन खेतों में चरने के लेके जाते हैं वहां पर उसके चराई का समय अगर ज्यादा हो जाता है तो पशु ज्यादा खा लेता है, या बरसात के बाद में जैसे बरसात होती है उसके बाद में हरी हरी घास उगती है प्रोटीन युक्त घास उगती है उसको अगर ज्यादा खा लेता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इस रोग में प्रमुख रूप से पहले

0: अचानक से पशु को आफर आता है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, पशु के मांसपेशी में ऐंठन हो जाता है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और इस रोग में मुख्य रूप से जो स्वस्थ पशु होते हैं और जो मेमने होते हैं वो प्रभावित होते हैं
1: जी,
0: और अचानक से हरे हरे धस्त भी लग जाते हैं। तो इस रोग को पहचानने के लिए ये जो प्रमुख लक्षण बताए हैं मैंने, उनका ध्यान रखें और साथ में ही जो पशु बीमार हुआ है उसको अलग करके पशु चिकित्सक से उसका तुरंत उपचार करवाना चाहिए
1: जी।
0: साथ में ही 3 महीने से जो भी बड़े पशु हैं उन सबका बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए और जो पशु जहां रहते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है एक बार आपके अगर फार्म पे आ गया है तो लगभग सभी पशुओं में होने की संभावनाएं रहती है।
1: अच्छा।
0: इसलिए विशेष ध्यान रख करके इसको इस रोग से अपने पशुओं भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है
1: जी। सर छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब गलघोंटू रोग है वो कहीं होया करे, इन रोग का ही मतलब है भेड़ बकरिया में भी और रोग होया करे क्या, और जे हुए तो पशुपालक आप पशुआ ने इन रोग से क्या बचा सके?
0: बंसी भाई, जैसे फड़किया रोग है जो बरसात के समय होता है, वैसे ही गलघोंटू रोग भी बरसात के समय होता है। यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भी श्वास नली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे ही पशु को तनाव मिलता है, जैसे पशु को तनाव देते हैं तो ये रोग अचानक से हो जाता है। तनाव कैसे मिलता है? जैसे पशु को अपन ने लगातार पैदल चलाया या एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी में उसको ट्रांसपोर्ट किया या पशुओं के चारे में अचानक से परिवर्तन हुआ या मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ तो ये जीवाणु जो श्वास नली में उपस्थित है अचानक से वृद्धि कर जाता है और ये रोग कर देता है। इस रोग में सबसे पहले पशु को बुखार आता है, नाक से स्राव आने लग जाता है, गले पे और छाती पे सूजन आ जाती है, सूजन का हाथ लगाते हैं तो कुछ दर्द होता है और सूजन आने से सांस नली पे जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने के कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके सांस के समय घर घर की आवाज आती है। इसलिए इस रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए रोग से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो बीमार पशु है उनको अपने बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करके उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। यह रोग भी बरसात में होता है तो बरसात शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसका टीकाकरण करवाना चाहिए सभी पशुओं में जो 3 महीने से बड़े पशु हैं, और जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके इलाज करवाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं साफ सफाई ध्यान रखेंगे तो इन रोगों से बचा जा सकता है। और एक टीकाकरण जो पशु स्वस्थ हैं उन सभी पशुओं में बरसात शुरू होने से पहले अप्रैल और मई में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।
2: क्यों और मतलब वही अर्खो भाई की साफ सफाई री सावधानी और टीकाकरण की सजगता जरूरी बात है।
1: बिल्कुल सर, गलघोंटू के बाद में डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि ब्रुसेलोसिस रोग क्या फैलिया करे और पशुपालक भाई किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये रोग के प्रति।
0: ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही खतरनाक रोग है, ये एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये पशुओं से मनुष्य में भी आता है और ये एक जीवाणु है जो बकरियों और भेड़ों में होता है। ये मुख्य रूप से ब्रुसेला मेलिटेंसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पशु की गर्भावस्था के अंतिम समय में जो अंतिम महीने होते हैं 3 महीने उनमें अबोर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तथा जो जेर होती है जिसको अपरा भी बोलते हैं वो गिरता नहीं है और बच्चा जाने से बदबूदार स्राव होता रहता है। जो नर पशु होते हैं उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है या जो मरा हुआ बच्चा बाहर आया है और जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है उसके संपर्क में आने पे दूसरे पशुओं में भी ये रोग हो जाता है। उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है या कोई जो पशुपालक उसको हैंडल करता है वो उसके संपर्क में आएगा, उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी जिस पशु में ये रोग होता है उस पशु को अलग कर दें, उसका उपचार करवाएं और साथ में ही जो उसका बच्चा मरा हुआ है, जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है और जो भी उसके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह जो उससे संक्रमित हुए हैं उन सबको गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। और जो 4 से 6 महीने के जो बछड़ियां जो बकरियां होती हैं, जो भेड़ होती हैं, उनमें टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। इस प्रकार से बचा जा सकता है। और मनुष्य में भी विशेष रूप से जो इस भेड़ों के और बकरियों के संपर्क में आते हैं उनको अपने हाथ अच्छे तरह से पानी और साबुन से धो करके फिर दूसरे काम करने चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
2: डॉक्टर साहब बकरियां और प्लेग और पीपीआर रोग कहीं हुआ करे, इनसे बचाव रा उपाय भी आप महाराज का पशुपालक भाई हैं उन्होंने बताओ सर।
0: पीपीआर रोग एक जीवाणु से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं। इस रोग में पशु को अचानक से तेज बुखार आता है, जीभ पे, मसूड़ों पे और होठों पर छाले हो जाते हैं तथा मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और मुंह से बदबू भी आती रहती है और नाक से गाढ़ा स्राव आता है, वो स्राव पपड़ी के रूप में जम जाता है तो पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बदबूदार दस्त भी लग जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें डिहाइड्रेशन से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके अलग से उसका पशु चिकित्सा इलाज करवाना

0: चाहिए और 3 से 4 माह के बीच के जो पशु हैं या 3 महीने से जो बड़े पशु हैं उन सब में उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैं बार बार टीकाकरण पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये रोग जो है पीपीआर रोग है ये सर्दियों में होता है, तो सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए और टीकाकरण से ही अपन रोग से पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि उपचार में भी पैसा लगता है, इसलिए टीकाकरण के द्वारा इन रोगों से पशुओं को या भेड़ बकरियों को अपन बचा सकते हैं, तो समय पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
1: क्यों मतलब वही है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी से पहली राखनी जरूरी है।
2: बिल्कुल सा, और अब जो को बखत है वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल सा, जरूरत है गीतड़।
2: बिल्कुल, तो आपसे सुन सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: भाई आबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातियां। और आज चौपाल में जानकर देवन सर उपाध्याय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सैन। और आज आप बातचीत करिया भेड़ और बकरिया री प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम।
2: हरखो भाई जिज्ञासा जी की जीवन ने कही है कि गति दिया करे।
0: बिल्कुल।
2: तो भाई देखो सर, जिज्ञासा ने बढ़ावन सारो डॉक्टर साहब

0: अगलो सवाल मैं कर रहे हैं, खुरपका मुंहपका रोग किया फैले और पशुपालक इन रोग से पशुओं ने किन भात बचा सके।
1: खुरपका और मुंहपका भेड़ बकरियों में होने वाला प्रमुख रोग है और अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो दो खुर वाले पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें ज्यादातर होती है। इस रोग में सबसे पहले तेज बुखार आता है, मुंह पे, खुर पे और थनों पर और अयन पर और खुरों के बीच वाली जगह पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो फिर अगर खतरनाक होने पर घाव का रूप भी ले लेते हैं। पशु लंगड़ा करके चलता रहता है, मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और बकरियां व भेड़ लंगड़ा कर चलती है और मेमनों में इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी पशु बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसको अलग करके उसका इलाज करवाएं। दूसरा, साल में दो बार इस रोग के टीके लगते हैं, एक तो अप्रैल मई में तथा दूसरा सितंबर अक्टूबर में, वो टीके अवश्य लगवाएं। और इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है FMDCP प्रोग्राम, जिसमें साल में दो दो बार ये टीके फ्री में लगाए जाते हैं। और साथ में जो पशु बीमार है उसको दलिया और मुलायम हरा चारा खिलाना चाहिए जिससे पशु उसको आराम से खा सके। साथ में प्रतिवर्ष सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और ये भी ध्यान रखिए जो घाव हो रखे हैं उन पे मक्खियां नहीं बैठने देवें, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पे लगाएं और लाल दवा का हल्का घोल बना करके उसको धो करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और मक्खियों पर नहीं बैठे, ये विशेष ध्यान रखे, नहीं तो वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं और घाव अत्यधिक खतरनाक हो जाता है और फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है।
2: बिल्कुल सर, और मक्खियां जदि बैठ सी जद बाड़े रे मायने गंदगी हुए, साफ सफाई नहीं हुए, साफ सफाई नहीं हुए जने देखो कीट पतंगा जी कहने बहुत फैलिया करे और पशुओं वास्ते बहुत ही नुकसानदायक है। और साथ ही साथ अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा हाँ कि भेड़ बकरिया में संक्रामक रोग से किया बच सका हाँ और इन बाबत पशुपालक ने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
1: संक्रामक रोग काफी घातक होते हैं और कुछ पशुओं को बीमार होने पर यह फार्म के लगभग सभी पशुओं में होने की संभावना भी रहती है, तो कई बार पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पता लगे कि पशु बीमार हो रहा है उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका खान पान, उसका पानी जो भी है सारा अलग करें। साथ में ही जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानसून में होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, तो मानसून में जैसे मैंने बताया फड़किया रोग होता है, गलगोटू रोग होता है, तो इनके टीके लगते हैं, वो टीके मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल मई में अवश्य लगाने चाहिए जिससे ये रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि फड़किया रोग और गलगोटू रोग अगर आपके फार्म पे आ जाते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सर्दी में होते हैं, जैसे चेचक रोग बताया मैंने, PPR रोग बताया, FMD बताया, खुरपका मुंहपका है, तो ये जो सर्दियों में होते हैं ज्यादातर होते हैं, लेकिन अभी आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी होने की संभावना रहती है। इसलिए इनका भी सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमेशा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कुछ टीके गवर्नमेंट से फ्री भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो टीके आप जब भी आपके गांव में कोई पशु चिकित्सक आता है या कोई कंपाउंडर आता है तो उनसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। साथ में फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई अगर रखेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पशुओं को संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, आहार हमेशा उनको संतुलित देना चाहिए जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। और अन्य फार्म से जो खरीद कर पशु लाते हैं या अन्य जगह से कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं उनको सीधा अपने पशुओं के साथ, पुराने पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है, उनको अलग से रखें, एक महीने तक उनकी निगरानी करें और जब एक महीना हो जाए उसके बाद उसको अपने अन्य पशुओं के साथ मिलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं को सर्दी से, गर्मी से और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिससे पशुओं में रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं और अपने आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं।
2: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
0: 100 बात रही एक बात के भी बचाव ही उपचार है।
2: बिल्कुल,
0: आप बताओ डॉक्टर साहब के भी बचाव ही उपचार होया करे और इन बाबत साफ सफाई के साथ साथ टीकाकरण है वो जरूरी होया करे। तो टीकाकरण सारू महाराज का पशुपालक भाई है, उन्होंने किसी किसी जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए, इन बाबत भी आप जानकारी दो सा।
1: अभी मैंने बताया कि बचाव ही उपचार है, बचाव का मतलब यह है कि रोग आना ही नहीं चाहिए अपने फार्म पे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि अपना समय पर जो शेड्यूल है उसके अनुसार पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ये पशुपालक शिकायत करते हैं कि मैंने टीका लगवाए थे लेकिन फिर भी ये बीमारियां आ गई हैं। तो सबसे पहले जब भी टीकाकरण करें हमेशा स्वस्थ पशुओं में करना चाहिए।
0: अच्छा,
1: दूसरा, टीकाकरण से पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलानी चाहिए जिससे जो टीके लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
0: अच्छा,
1: टीका अच्छी तरह से काम करेगा। तीसरा, टीकों का रख रखाव हमेशा ठंडे तापमान 2 से 8 डिग्री पर ही करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर टीके को आपने गर्मी में रख दिया या बाहर रख दिया तो टीके खराब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और हमेशा उचित शीत श्रृंखला का पालन करना चाहिए, अर्थात टीकों को जब आप

0: गए और लगाने से पहले उनका अच्छी तरह से ठंडे तापमान पर रखना चाहिए, उसके बाद ही टीकों को लगाना चाहिए। और हमेशा पशुपालक को अपने जो टीके लगाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैंने ये टीका कब लगवाया था, दूसरा टीका मेरे को कब लगवाना है। ये जब याद रखेंगे तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं वो आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और टीकाकरण भी आप जब करवाएंगे, अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो टीकाकरण भी फेल नहीं होगा, टीकाकरण भी काम करेगा और अपने पशुओं को आप बचा सकते हैं। टीका अगर समय पर नहीं लगवा पा रहे हैं फिर भी टीकों को लगवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी आने की संभावना आजकल कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दो रोग मानसून में होते हैं, अगर आप मानसून में अप्रैल मई में नहीं लगवा पाए तो अगर जून में या जुलाई में लगवाना तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीकों जब भी लगाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में टीका काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा टीकाकरण अगर आप थोड़ा समय इधर उधर भी हो जाता है तो करवाना चाहिए।
1: पहली बात तो आई है कि भाई समय से लगाना चाहिए, और जो नहीं लगा पावा तो भाई देखो सा दो चार दिन ऊपर हो जाए तो चिंता की बात को नहीं, तुरंत लगा लेना चाहिए,
2: टीको लगवाना है
1: जरूरी है।
2: बिल्कुल सा। और अब थाने एक अच्छी बात और बताऊं कि देखो 18 मई 2026 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप 17वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनायो और डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में शामिल आ।
0: हाँ हाँ, मैं भी इस प्रोग्राम का साक्षी बना हूँ और धूमधाम से हमारे विश्वविद्यालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है।
2: इन अवसर पर डॉक्टर सुमंत व्यास आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अब थारो मन उसी के हूँ भी सुनना चाहूँ। हाँ,
1: बिल्कुल बताओ
2: सर। तो आपने और आप जितना भी श्रोता है, हमारा पशुपालक भाई है, बीएनबी में मेरा जगह अंश है, वे सुनावना चाहूं तो आपसे सुनो सा मेरा अंश।
3: जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोचा गया था तब वो अकल्पनीय लगता था। उससे पहले शायद एक या दो विश्वविद्यालय ही पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविश्वविद्यालय के नाम पर अलग से स्थापित हुए थे और बहुत मुश्किल था कृषि के पारंपरिक क्षेत्र से अपने आप को अलग स्थापित करना। इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के समग्र जो जीडीपी में योगदान है उसमें सबसे अहम योगदान पशुपालन का होता था और इस पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन का योगदान कृषि से भी ज्यादा होता था। मैं उन सभी को जिन्होंने प्रोफेसर गहलोत के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिनमें प्रोफेसर टीके गहलोत, प्रोफेसर तंवर, प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पुरोहित, ये सभी जो पीढ़ी थी इन्होंने उस वक्त जिस तरीके से काम किया तभी ये परिकल्पना साकार हो पाई। किसी भी अगर उच्च अधिकारी को अगर हम लेकर आए फार्म्स पे तो एक बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है। बहुत कुछ और करने की जरूरत है फार्म्स पे। हमारे कंट्रोलर साहब की टीम जो है बड़ी अच्छी रही और कुछ पैसा इस विकट स्थिति में भी हम लाने में कामयाब हुए हमारे फार्म्स को सुदृढ़ करने में। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये चीज हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसी के कारण ही हमें टीम्स ने मेहनत करी तो आईसीआर का जो प्रोजेक्ट है वो भी वापिस आया, रिवाइव हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट भी जो बंद होने वाला था वापिस आया प्रोजेक्ट। एक और डिसहार्टेंड टीम थी उनकी भी स्पिरिट कुछ बढ़ी है और एक नया प्रोजेक्ट फार्म मशीनरी का भी सबमिट किया है। उम्मीद है कि वॉलंटरी सेंटर आना चाहिए। कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हमने सबमिट किए हैं एनएलएम में और टीम ने जयपुर में भी बड़ा प्रयास किया उसमें और आगे भी प्रयास जारी है। अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं नहीं कहता पर कंटिजेंसी में हमें काफी फायदा हो जाएगा और कुछ अच्छे रिसर्च आउटकम हमारे आएंगे। इस विश्वविद्यालय की जो टीम है उसने जो एलएसटी पे सर्वे करके जो रिजल्ट दिया मेरे को भी लगता था कि ठीक है हम लोगों ने काम किया और अब भेज दिया और कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट जब अब वहां से सुनने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि जो वाइड स्प्रेड उसकी जो परमिशन थी एलएसडी वैक्सीन की उसके लिए वो स्टडी बहुत सहायक हुई है। मैं नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का उस जो उसमें काफी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों ने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की एलएसडी वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। ये एक विशेष

0: विश्वविद्यालय को, हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी नजरों में है।
1: जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को टोफल जीआरई क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है, मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारी इस विश्वविद्यालय की शुरू से रीढ़ की हड्डी रही है। इस जो झंडे ने हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को एक नई और अच्छी ऊंचाइयां, प्रोफेसर रतन सिंह से लेकर आज तक हमेशा इस क्लिनिक का जो है बड़ा नाम रहा है। एक चीज जरूर साथ में रखें कि हसरतें ख्वाहिशें बहुत हों पर जरूरतें कम रखें। अगर आपको बिना एसी के भी रहने दिया जाए तो आपको एक क्षण भी परेशानी ना महसूस हो, इस तरह की अगर जिंदगी अपन बना सकें तभी हम सही मायने में पशु चिकित्सक कहला सकेंगे। धन्यवाद।
2: वाह भाई अरखू भाई, देखो सा सुमंत व्यास जी रा जका उद्बोधन सुना नी, मैं इया लागे कि भाई देखो सा जन जन सु जरूरी बातें बता रिया था।
3: बिल्कुल सर, अबे देखो सा वक्त इशारो करण लाग गया है
2: और उन इशारे ने तो भाई देखो सा समझते थका। समय री कदर सगला ने करनी चाहिए।
3: तो मैं आपने बता दू सा, आज चौपाल रामायण राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारिया सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन, और आज आप बातचीत करी भेड़ और बकरियां री प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम विषय पर। डॉक्टर मनोहर सेन साहब, आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालकों ने इतनी बढ़िया महत्व जानकारी दी, इन सारू मैं देवा आपने धन्यवाद और करा
4: राम राम, राम सा
5: राम राम सा।
6: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणे री बातिया। कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा, घणान घणा राम राम सा।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
8: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो।
9: काई करूँ दापू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बीरो जीसोरो भी कौन।
8: आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी सा, ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी हो रही सबली समस्या नु समाधान।
10: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी और इंग्लिश न्यूज का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की

0: प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि विन नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, said they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian Missions and maritime stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations.

आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे हमारा लोकप्रिय ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज शामिल रहेंगी गांव देहात की ताजा गतिविधियां, खेती बाड़ी से जुड़ी चर्चाएं और कुछ मधुर लोक सुर। इसके तुरंत बाद 7:30 पर ज्ञान विज्ञान मौसम और लोक संस्कृति की झंकार लिए प्रसारित होगा सीमा डेरी गूंज।

रात्रि का संगीत संसार भी रहेगा बेहद मनमोहक। रात 8 बजे और 9:30 और 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। नौ बजकर 15 पर पेश होगा सुरों की सरलता से सजा कार्यक्रम सुगम संगीत। 10:30 ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। आइए अब एक नजर कल होने वाले कार्यक्रमों पर।

सुबह की शुरुआत होगी सकारात्मकता से भरे कार्यक्रम नमस्कार के साथ, जो 8:30 पर प्रसारित होगा। इसमें रहेंगी दिन भर की उपयोगी जानकारियां, मौसम का हाल और समाचारों की झलक।

सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में 23वें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान 2026 के आयोजन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

दोपहर के समय 1:05 पर किसानों के हितों पर आधारित कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित होगा, जिसमें कल चर्चा की जाएगी जैविक विधि से फसल संरक्षण के बारे में। इसके बाद 1:15 पर सुनिएगा राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा सुंदर लोक कार्यक्रम गणगौर। दो बजकर 30 मिनट वक्त रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का, जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। शाम का समय रहेगा युवाओं के नाम, 5 बजे प्रसारित होगा युववाणी। शाम की लय को आगे बढ़ाते हुए 7 बजे सुनिएगा चौपाल और 7:30 सीमा डेरी गूंज। फिल्म संगीत कल सुने जा सकेंगे 6:45, रात 8 बजे और 9:30 पर, जबकि सुगम संगीत का साथ मिलेगा 10:30, दोपहर 12:30 और रात्रि 9:15। तो श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी जोधपुर सनसिटी चैनल के आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है देश की मिट्टी से जुड़े कार्यक्रम देशगान का।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे देश गान। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है संस्कृत समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: संप्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौंदर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौंदर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमन्त्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मन्त्रिमण्डले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मन्त्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायं अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयो

0: सचेतितः यत् ये केऽपि शङ्कितस्य अथवा पुष्टीकृतस्य इबोला संक्रमितस्य रक्तेन शरीरद्रवेण वा सह प्रत्यक्ष सम्पर्कं स्थापितवन्तः तैः प्रवासनिर्गमनप्रक्रियायाः पूर्वमेव विमानपत्तनस्वास्थ्याधिकारिणे अथवा स्वास्थ्यपटलस्य पुरतः अनिवार्यरूपेण विवरणं प्रदातव्यम्। तमिलनाडुराज्ये जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे शासनेन अद्य स्वमन्त्रिसभायाः विस्तारः कृतः, येन राज्ये संयुक्तमन्त्रिसभायाः निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः। कांग्रेसदलस्य द्वाभ्यां सह त्रयोविंशतिः नूतनमन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः। अनेन नूतनेन विस्तारेण मन्त्रिमण्डलस्य संख्या द्वात्रिंशत् यावद् वर्धिता, यस्मिन् मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजयः अपि अन्तर्भवति। कांग्रेस दलम् अधुना प्रायः षड् दशकानाम् अनन्तरं राज्य मन्त्रिसभां प्रति प्रत्यागतः अस्ति। सप्तषष्ट्यधिकनवशतशततम वर्षात् परं प्रथमवारम् एतत् राष्ट्रियदलं तमिलनाडुराज्यस्य मन्त्रिमण्डले प्रतिनिधित्वं प्राप्नोति। नवविस्तारित मन्त्रिसभायां चतस्रः महिला मन्त्रिणः अपि सन्ति। केरल विधानसभायाः नवगठितस्य प्रथमसम्मेलनस्य आरम्भः अद्य तिरुवनन्तपुरं नगरे अभवत्। जी सुधाकरन् इत्येषः नवनिर्वाचितान् सदस्यान् शपथं प्रदत्तवान्। अध्यक्षपदस्य निर्वाचनं श्वः भविष्यति। सत्तारूढेन यूडीएफ इत्यनेन तिरुवञ्चूर राधाकृष्णन् इत्येषः तस्मै पदाय नामाङ्कितः। विधानसभायां भाजपादलस्य त्रयः सदस्याः सन्ति, अतः स्पर्धात्मकनिर्वाचनस्य अपेक्षा वर्तते। बी गोपकुमारः तस्य दलस्य अभ्यर्थिरूपेण घोषितः अस्ति, किन्तु विपक्षः एलडीएफ इदानीमपि निर्वाचनविषये स्वस्य निर्णयं न उद्घाटितवान् इति। पश्चिमबङ्गालसर्वकारेण सम्पूर्णे राज्ये सर्वेषु मदरसा इत्येतेषु तत्क्षणप्रभावेण वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् अनिवार्यं कृतम्। अयमादेशः मदरसा शिक्षानिदेशालयेन प्रसारितः। अधिसूचनायाः अनुसारम् एषः निर्देशः सर्वकारीय प्रारूप मदरसा इत्येतेषु, सर्वकारीय अनुदानप्राप्त मदरसा इत्येतेषु, मान्यताप्राप्त मदरसा इत्येतेषु तथा च अल्पसंख्यक कार्यमन्त्रालयस्य एवं मदरसा शिक्षाविभागस्य अन्तर्गतं कार्यरतासु अनुमोदितासु शिशुशिक्षाकेन्द्रेषु माध्यमिकशिक्षाकेन्द्रेषु च प्रवर्तिष्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः तथा दक्षिण कोरिया देशस्य देशभक्ति भूतपूर्व सैनिक कार्यमन्त्री कुओन ओहयोल च अद्य सियोल नगरस्य इमजिंगक उद्याने भारतीय युद्ध स्मारकस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सायं सार्धसप्तवादनतः आरभ्यते। गुजरात टाइटन्स दलेन पूर्वमेव अन्तिम चतुष्क क्रीडायां स्वस्थानं निश्चितम्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं च अंकतालिकायां चतुर्थस्थानं प्राप्तुं स्वस्य सम्भावनां सुदृढीकर्तुं प्रयतते। अत्रान्तरे गतरात्रौ कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन मध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुर्भिः स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से दो दिन के प्रदेश दौरे पर।

0: रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट

0: ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
2: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्यवाही से कर रही है और जिन आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
1: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस

0: के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
0: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने समस्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टि बाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग 2 वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टि बाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों, छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2000

0: 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती शुरू कर दी है। ये 14 जून तक चलेगी। इससे पहले मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर से 31 नए रेलवे अंडरपास RUB स्वीकृत किए गए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा खोर्रा, निमाली, जोपाड़ा, कोलवा, मानोता, भजेड़ा दुब्बी, दयालपुरा बस्सी, हंसमहल बस्सी और थानागाजी के टहला बाईपास रोड फाटक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है। क्षेत्र में RUB बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलख जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शीट के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश का दौरा सारू पधारेला, राज्य ने नुवी रेलां री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टानो काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो, लोगा सागर जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम माय चुनी ची। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रात दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वह काल सवार जोधपुर माए न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माणा खबर नवी श्री रपट।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है। वह भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आगाड़ी प्रदेश का कई स्टेशनों वहती निकलेला। इन पाछा श्री वैष्णव पाली माए अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा कामा रो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थावर ने जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तरा माए नुवी नौकरी लाग्या कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। इन पाछे वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तहत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माए गांव वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माए शामिल होने वाला सरकारी कर्मचारियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावां री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी री हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हल्का माए खुद रे पान उबवेवन न सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ही दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव सारू वार्डां रा पुनर्गठन और वोटर लिस्टां तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू जिला रा नारनोद गांव माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वह कहो कि चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रिची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माए कहो कि सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब ट्रिपल टेस्ट रपट रा आधारों राजनीतिक आरक्षण दियो चावेला।
2: हमारी सरकार ने आने के बाद आयोग का गठन किया। आयोग अपनी कार्यवाही गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
0: राज्य मानवाधिकार आयोग नागौर जिला माए खुदाई रा काम जुड़िया मजूरा माए सिलिकोसिस री बीमारी अरवारा इलाज सारू जरूरी सुविधा री कमी माथे खुद संज्ञान लिनो है। आयोग रा अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी नागौर रा कलेक्टर और चीफ माइनिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी कर गैर कानूनी तरीकाओं खुदाई रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। आयोग अहलकारा ने सगला खनन हलकां री भौतिक जांच करण और मजूरा ने हिफाजत उन जुड़िया साजो सामान

0: वाला 5000 चाक और मिट्टी गूंद वाली मशीना दी जावेला। इस आगे मौजूदा साल में माटी कलारा 100 प्रशिक्षक तैयार करावनो ही तय करी चियो है। राज्य सरकार और गूगल इंडिया री ओरू आज जयपुर में बिल्ड विद एआई कार्यशाला राखी जी। इन माय नुआ एआई टूल्स री सिखावण दीरी जी। ई मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉ रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवावां और जनता रा भलारी योजनावां री पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो। ई मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य उन जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है। डॉ जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल नु हाल ताई 3 लाख लोगों ने फायदो मिल चुकी है। आ पीढ़ी दर पीढ़ी वेवन वाली बीमारियां आगे करण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है। इरा तेत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम और जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माय जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ली राव सा 1800117800। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ली राव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला। राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टा रो काम पूरो भयो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम माई चुनी ची। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माई प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं शाम के 7 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं चौपाल

0: चौपाल कार्यक्रम सुनना सगला हेतालू श्रोताओं ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोई
1: और चंद्रबान बिश्नोई रा
0: राम राम। चंद्रबान भाई कहीं हालचाल है?
1: बिल्कुल हालचाल एकदम बढ़िया है जी भी सर। यू बार देखा नहीं गाँव वाले मायने दिन रहा 12 बजे ने 1 बजे नटी उटी चिड़िया कबूड़ा मोरिया उड़ता दिखे ने वाने जडे मुंडे हमें जागा तो यू लगे के आने कठे न कठे पानी दी तलाश है।
0: बिल्कुल देखो के आज को मौसम है और आज की तपत है आ देखो मिनख जद इरो तकलीफ भुगत रही है और जे गरु बिना पानी री बोतल लिए कटी खेत खलियान हम निकल जा तो तकलीफ हो जा। एड़े में वन्य जीव देखो की कर वे आपरो जीवन व्यापन करे। आज हूँ भाई पहला 50 या 100 साल पहला मान ला तो आपनी तो इतनी आबादी ही न इन तरह आप जंगल री कटाई करी तो वन्य जीव जका स्वच्छंद वितरण करता। हमें उन विचरण माते लाग गी पाबंदी आपा कर बना लिया ट्यूबवेल कर दी तार बंदी ओरन गोचर बटे आपा अवैध खदान करन लाग गया कटाई कोई रिंद रोई तो है ही कोनी। एड़े में बाना जका नेचुरल जका वाटर रिसोर्स रा सेंटर हा कटाई कोई नाडी ही कोई खाड़ो हो कोई बाड़ो हो जट पानी भेड़ो रहे तो वे जका प्राकृतिक

0: संसाधना वह भी धीरे धीरे लुप्त हो गया।
1: मैंने कहा आप रो कब्जो कर लियो, और गुरविंदर जी देखो टाइम रहे हाथ माना के भाई सब चीजें जरूरी है, ट्यूबेलाई करावनी पड़े, ना आर्थिक विकास ही करनो पड़े, सामाजिक विकास भी करनो पड़े, पण कठे न कठे यूं देखा नहीं लगे के ओ विकास कठे जान रुकेला न कई भाव पड़ेला। तो भाई लोगा केवण री बात आ है कि थोड़ा सा वण परिंदा रे हमें भी जाका उन प्रकृति कानी भी देखा जिकी आज बिलख रही है के भाई थे तो मायने कूलर लगाए लो, एसिया लगाए लो, सो जाओ, पण मारा हाल कई वो ही, क्योंकि विकास रे नाव माते कटे न कटे रूखड़ा भी बढ़ता दिखे, तो पानी रा स्रोत है वाणा माते भी मिनकरो कब्जो वेग्यो, जगह विचरण करता पशु खुले रमाई ने बटे भी आपा तार बंदिया करण जा लगा ने एक तरह रो जाल गूंथ दियो है।
0: वन्य जीव प्रकृति रा श्रृंगार है, और किणी आदमी रो श्रृंगार खत्म हो जाए जना आदमी री आदि अभिव्यक्ति खत्म हो जावे। तो अगर आप इनी तरह वन्य जीवा रे प्रति भावना नहीं बदला तो आउनाली पीढ़िया ने आपा कई वन्य जीवा री तो खाली फोटो बतावा के अड़ो काड़ो हिरण हो तो ओ चिंकारा हो तो आ गोडावण होती आ लौकी होती। पहला देखो आज 30-40 साल पहला पश्चिमी राजस्थान में जर्क होती जो की पूर्णतः विलुप्त होगी
1: देखो आप,
0: और पछे एक दौर आयो जो को गोडावण है जो को भाई ये ने पक्षी तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र मायने रे वेर उरो अवैध शिकार होयो करियो न वा एकदम लुप्त रे कगार माते पहुंची जना सरकार चेती न हमें उरो संरक्षण होयो है तो थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ी है
1: जी।
0: क्यों रो मतलब वो है कि भाई ए भी प्रकृति रा और इन धरारा उतैज मालिक है जिता आप हो, आप रो पट्टो बना मकान बना लियो तो इरो मतलब इरा धनी नहीं हो गया, इन धरारा देख जीव इन धरारो कई धनी है, उरे बारे में भी थोड़ो होच करो विचार।
1: बिल्कुल गुरविंदर जी आप की नहीं कर सका, माना के भाई मैं रोई पाची नहीं वे सके आड़ पाणू ठीक है, तार बंदिया भी करनी है, पर कठे इन घटा जगह चिड़िया आपने बार उड़ता दिखे वाने वास्ते पानी रा परिंडा आपने जरूर लगाना चाहिए।

0: देखो कि आज रे टाइम रे महीने मानव सभ्यता रे महीने कई कई नई चीजा ला ले 10-20 साल में देखने मिली। अगर भारत रे मुजब ये री बात करा तो सन 1947 में आप आजाद हुआ यार भाई आपने देश रा टुकड़ा हुआ पाकिस्तान बनियो और उए रे बाद ला ले 20-30 साल में आतंकी जगह हमला चाहे उरी रो वो चाहे भाई बम्बई ब्लास्ट हो बम्बई रेल ब्लास्ट तो लगातार इन तरह री जिहादी मानसिकता बनान आपने भारतीय निर्दोष लोगों रे माते आक्रमण करने रो प्रयास हो। और इन्हीं क्रम में लारले साल 22 अप्रैल 2025 ने पहल गांव रे महीने आतंकी हमलो हो और निर्दोष लोग जका बटे घूमने आया बाणी चक्की धार्मिक जांच कर बाण माते हमलो करियो और कई एडी कई विभिन्न तस्वीर हमें आई के कोई नुआ पनी जोड़ा गिया बाणी जकी लड़की है वरी कहीं के आख्यारे हम ही वाण जका पति है बाणी मौत होगी। तो ओ एक तरह मानवता ने शर्मसार करनाड़ो जको है कृत्य हो घटना ही और पूरी दुनिया इन घटना री चकी है कहीं गलत बतायो और के भाई इन तरह रो हमलो नहीं होना चाहिए ओ मानवीय सभ्यता संस्कृति रिवाज ते खराब है। पछे सरकार ऑपरेशन सिंदूर चला और जको करारो जवाब दियो उयरो भाई कठिन कठे असर तो है
1: बिल्कुल क्योंकि देखो जटे भी गलत वे बटे अपन ने बोलनो पड़े आवाज उठावनी पड़े और गोली रो जवाब गोली में भी देवनो पड़े और भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर रे रूप रे मायने ओ जवाब दियो के भारत सरकार आतंकवाद रे विरोध रे मायने ही है और रेवेला और आज गुरविंदर जी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मना रिया।
0: देखो आतंकवाद एक तरह रो मानसिकता है और वह मानसिकता धार्मिक आचरण हुए ने कहीं कह के दिमाग रे मायने भर दे के थू अगर दूजे धर्म रे लोगा ने मारी तो थन्ने एड़ो मिली ओ सिर्फ मानवता रे वास्ते एक कलंक है। और जको एक तरफ तो कह दुनिया पूरी बनाई दुनिया पूरी बनाई तो भाई उए में पछे एड़ा लोग क्यों बनाया जका मिनक मिनक ने मारे है। और अगर कोई दुनिया पूरी बनाई तो उए ने कई फर्क पड़े कोई की नहीं माने कोई की नहीं माने।
1: बिल्कुल
0: भारतीय सभ्यता संस्कृति तो भाई 33 करोड़ देवी देवताओं ने माने हमें उए में अलग किकर कर सको।
1: बिल्कुल और गुरविंदर जी देखा के मान्यता री बात करान विश्वासारी बात करान तो बड़े शर्म री बात है के विश्व रे कई देश रे मायने आतंकवाद री स्कूल चले।
0: बिल्कुल आतंकवाद री जकी स्कूल है वे जका उरा लोग ये ने बंद करी जना होई। सरकार रो प्रयास सीमित हो सके सरकार रो प्रयास कठोर और दंडात्मक हो सके लेकिन सुधारात्मक प्रयास वहाँ खुद लोगा ने करनो पड़े के भाई मारो टाबर एडी स्कूल में जार जेहादी मानसिकता ही कह तो हुए नहीं उठे ज रोको।
1: बिल्कुल
0: आज वो जको थाने लालच देवे थाने लोभ देवे हो सके वो आउन वाले

0: टाइम रे आप रे बच्चे रे भविष्य ने खराब कर दे। अगर आप ये ने देखा नहीं तो आतंकवाद री चपेट रे मैंने कई देश आए उड़ा है, खास तौर माते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, भाई लेबनान, हमें इजराइल रे माते ही देखो किन तरह वाल बेजो का लोग उन टाइम शाम रा आप रे खानो खाऊने रे होटल रे मैंने पार्टी करता उठे बे पैरा ग्लाइड आ और बच्चा ने बच्चिया ने मारिया। एक कोई एडो विभत्स दृश्य है
1: जी
0: के ने ने टाबर ने तंदूर में ना के इनके नहीं नहीं अबे मार माते हम लोग खराब करियो है। तो जको आतंक रो पहलो हमलो करी उठे ने समूल नष्ट करन रो अगर बात नहीं करानी तो ओ धीमो जहर होले होले फैलतो रही। और भारत सरकार हमें वो एक कठोर निर्णय लिए कि कोई भी आतंकी घटना कठे भी हुए उन्हें 0.0% भी किनी तरह रो कहीं है कि उन्हें नहीं देवनो लाभ,
1: बिल्कुल
0: उन्हें समूल नष्ट करनो, चाहे वो आतंकी कठेरो जो
1: जी जी
0: कोई राष्ट्र रो वो कोई उगेरे बावजूद भी आपा देखा भारत रे मायने कई तरह रा कैमरा पकड़ी जाए जका लाइव स्टेटस है जका विरोधी देशा ने भेजे आतंकवादी री घटना करण वास्ते जका मिलिट्री रा या सामान्य बाजार जका आउन जाउन रहा है नी वहां माते कैमरा लगाएड़ा। तो देखो कितनी आगे री सोच देश में रहने वाले लोग गद्दारी करने रो प्रयास करे इनू ज्यादा कई शर्मसार घटना हो सके।

0: और गुरिंदर जी लारले काफी समय वहां पर देख रहा है कि जिका जिका देश आतंकवाद ने संरक्षण दे रहा है
1: वह खुद बर्बाद हो गया
0: और भारत रिया नीति है कि भाई बानो साथ नहीं देवाला। क्यों नहीं देवाला? क्योंकि आतंकवाद एक तरह वहां पर देखा तो समूची मानवता रे वास्ते खतरो है। वो कोई एक देश रे वास्ते या एक समाज रे वास्ते एक धर्म रे वास्ते नहीं है, बल्कि एक पूरी जगह मानव जाति और मानवेतर प्राणी भी जी का पूरी प्रकृति है, पूरी समूल इन सृष्टि वास्ते आतंकवाद कठे निकटे एक एड़ो जहर है जिको इन सभ्यता ने नष्ट करण खातर पैदा वेरियो है। समय रहते अगर आप नहीं चेतिया तो निश्चित तौर वहां एक बहुत बड़ी बीमारी बन जावेला।
1: देखो कि भाई लोग आज दिन विशेष है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा तो भारत रे दोनों तरफ, एक तरफ बांग्लादेश रे महीने जिहादरी फैक्ट्री चले अठीने पाकिस्तान में, तो लार लेदी ने एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई कि देश आजादी रे बाद भारत और पाकिस्तान में अंतर यूं आयो कि भारत आजादी रे बाद आईआईटी खोली, मेडिकल कॉलेज खोली, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली, पढ़न लिखन री सुविधा पैदा करी, गांव गांव डाणी डाणी पहला एक एक स्कूल खोली, पचे वहां स्कूल में प्रसार करियो, राज्य सरकार कॉलेज स्थापित करी, तो शिक्षा रो प्रसार करियो, उठे पाकिस्तान रे मायने इन तरह जेहादी मानसिकता री स्कूल खोली धार्मिक जामो पेरान एक मुल्ला ने मिलिट्री रो गठबंधन बनियो। तो आज बाणी कई हालत है, आज बे भिकारी मुजब भीख मांगता दुनिया में फिरता दिखे, और उठे भारत जो है बड़ी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था रूप में आज दुनिया ने विश्व गुरु बन और दिशा निर्देश देवे।
0: देखो गुरविंदर जी, जब तक आप शक्तियों ने निपटाला आतंकवाद रो खात्मो नहीं वेला, और जब तक आप अपनी शक्ति रो सही रूपांतरण नहीं कराला तो आतंकवाद रो खतरो कम नहीं वेला। जो आप बात करी के भारत तो आईआईटी खोली और पाकिस्तान आतंकवाद री स्कूल खोली, वही जो एक फर्क है कि भारत आप रे मोटियारा री जगी ताकत है उन्हें सही दिशा देवन खातर प्रयास करियो कर रियो एन करेला भी, जबकि कई देश ऐडा है जिका नेगेटिव रूपों के इन दुनिया ने आपा अपने बल बुद्धे माते बुद्धियों तो नहीं हरा सका, लेकिन ऐडा हथकंडा अपनावा जिनसु इन दुनिया ने डराएन धमकान भय दिराएन आप परास्त कर सका, ए मनसूबा कदई कामयाब नहीं वेला।
1: देखो भैरी जक है नी वह चीजा खत्म होगी, दुनिया बदल गिर, आतंकी जकी मानसिकता है, आतंकी जकी सोच है, आतंकी चलाने वाली जकी स्कूल है, अब वहां खुद लोगों ने तय करना पड़ी कि भाई मारे टाबर ने मैं किए रस्ते गालू। आज हमें जो को पाकिस्तान रो मुल्ला मिलिट्री जो को कॉम्बिनेशन है वो जरिए सोशल मीडिया भात भात री फेक जकी न्यूजा बनावे, वे में कह हो आपने मारे है ना आपने काटे है ना आपने, वो ए दिखावे कि आपने धर्म रे माते बहुत ही अत्याचार हो रियो है, अठेरा जका टाबर है बाणी मानसिकता में बदलाव करने को प्रयास करे कि वे कठिन कटे आतंकी घटना कर दे। तो भाई देखो बाणो काम है भारत ने कहीं के असुरक्षित करनो, क्योंकि आज दुनिया भर रो व्यापार भारत में आ रियो है, तो अठेराई टाबर गुमराह हो न बाने हाथे नहीं जुड़ जावे, इन बात रो ध्यान टाबरा ने राखनो पड़ी, वहां मोहल्लेदारा ने राखनो पड़ी, समाज रा अग्रज लोग है बाने राखनो पड़ी, और डांटनो पड़ी कि नहीं भाई दुनिया रे महीने सबों पहला अगर आप भारतीय हो तो देश पहला है, देश रे बाद कोई जाति है न कोई धर्म है, जको आदमी आके मारो धर्म पहला है ये रो मतलब ये मन में खोट है, और वो कदी इन भारतीय भारत माते चोट कर सके, तो क्यों मतलब है आपने घर परिवार स्कूल में ऐडी शिक्षा दो कि सब पहलो और मोटो धर्म है भारतीय होनो और इंसानियत मोटो कोई धर्म नहीं है।

0: भेड़ा बैठन कहीं करा के आओ चाय पीवा। तो एक तरह आपसी सौहार्द है जी को सामाजिक सद्भाव है उनने बढ़ाने रो काम भी आ चाय करे।
1: बिल्कुल देखो चाय करे लेकिन चाय सीमित मात्रा में करे। हारो दिन डोलिया माते बैठे चाय हुरकनो हतई करनी तो वह तो पार पड़े को
0: अति वर्जित है।
1: और भारत की बात करा तो भाई आपने तो चाय बेचन नाला देश रा प्रधानमंत्री बन सके।
0: बिल्कुल।
1: और वे ने बड़े गुमान रे साथे कह सके कि भाई मैं भी चाय बेचता तो क्यों नो मतलब इन लोकतांत्रिक प्रणाली में इन तरह रा उदाहरण है कि चाहे आप किनी परिवार में जन्मिया हो किनी जाति में जन्मिया हो किनी प्रांत में जनिया हो अगर आप में गुण है आप रे मायने बुद्धि है आप रे मायने शिक्षा है आप रे मायने इन तरह सोच है तो आप शीर्ष स्थान माते पहुंच सको और इन देश रो नेतृत्व कर सको।
0: बिल्कुल गुरुवेंद्र जी धंधो चाहे कोई भी हो चाय बेचन रो काम वे तो कहीं साबुन बेचन रो काम वे तो कहीं कोई भी व्यवसाय छोटो नहीं है छोटी है तो अपनी सोच है इन वास्ते आप सोच ने बदला।
1: बिल्कुल सोच बदलो देश बदलो और हमें देखो कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई
0: चंद्रभान बिश्नोई ने दिराओ सीख
1: राम राम, राम।

0: किया जावाती को तावड़ो पड़े, नवला बारी डाणी की कर जाओ मारो जीवड़ो जड़े, तावड़ो पड़े नवला बा तावड़ो पड़े ओ नवला बा।
1: अरे फाटक खुली है,
0: अरे खोलो कनी, खोल खोले
1: कम मगज खराब हो गो की रह जी को।
0: अरे मातो बड़े मातो
1: मातो बड़े तो भाई
0: हाँ
1: अठा डुका रहा, चिंता मत करो कोई बढ़िया है जी को कह
0: बर्फ टुकड़ो लाया
1: बर्फ को नहीं छा पानी पाऊ थारे है कह नी सेवा तो करू रे भाई
0: करो की ठंडो होना।
1: अरे कह दियो छा पानी पा
0: दूर
1: के देखे छा री तासीर नी बा कही है के ठंडी मेरे।
0: अच्छा
1: थोड़ा घो कोई थकेलो वह नी भाई थोड़ा थोड़ा नेड़ो आवे भाई सारे कोई
0: नेड़ो मैं राबड़ी की बोतल लायो।
1: अरे की कौन लायो तो राबड़ी की बोतल लायो तो पी लेवा राबड़ी की पी लेवा जलके वाली छाल लाओ तो भाई पी ले तार नहीं तो ठंडो पानी पी ला।
0: मैं नेड़ो आयो मार माता में थोड़ी चंपी करो नी आज।

0: संभाले कर दो।
1: मैं क्या भाई कमरे में आओ रो, कमरे में मैं बैठो लो करूँ के तू थाम ही आन थे ऊंचा लू।
0: नहीं नहीं ऊंचा है कहने लाओ
1: यार, तो ऊंचा लू भाई। और
0: नहीं थे देखो थे मन बचपन में घणो ही थे बारे दिशोर गया ना जन बड़ी कई थार बा है जो को खुआ मा ते बीटे तू 5 साल रो नी जन पहाड़ मा छड़ता भाटा नेकता बीटे तन खुआ मा ते लिए लिए फिरता।
1: अरे भाई हम कह दिया नहीं कि लाली बात मत करे।

0: जंजर के कोई काम कर लो अपन गोना ले जाए बेगा चरान लिया होना और गाया ने ड्यूटी फेर फिर कोई चारो कुछ ना कर तो टाइम मत कर लो सिया कर दो।
1: मैं तो थारे बाप फाटी ओड़ की धोती है नी भी धोती हूँ मुंडो और हगड़ा बांध जोड़ा रहा कुंभड़ती में गोना ले जाऊं जरा
0: तो की कोनी पर बात आ है रे मैं देख यो कोई धोती रो कोई भैरे तो कोई पोती को बंदे
1: नहीं हो भैरे कह रहे पोती बंदे
0: कम था भाई भैरे थार जज्जा के कर सके
1: नहीं भैरे मत ओड़ा उड़ी रखू।
0: अरे भाई क्यों को नहीं मैं तो देखे थे के कर सको इमान मनठा है।
1: अच्छा
0: क्या मने भाई शेर है क्या दियो को थर रामेश्वर की कर सके
1: नहीं अच्छो को काम ही करूं घड़ो थोड़ो करूं।
0: अरे मैं कह भोरो भोरो जी कहता खरतू जी कहता पद्मो जी कहता ताज मोहम्मद जी कहता है क्या थर एट पैट आएगी मार करने
1: कुल मिला छो की पेड़ दीवी के भाई नवला
0: नहीं क्या के बहुत बढ़िया है जलमेन जलमेन भाई
1: सोते मारे खाते
0: सही ले मैं की कौन भाई कोई बात बतल बता।
1: देखो नवला बा आज जिन तरीकों पूरी दुनिया देश रे महीना अलग अलग बढ़ रही है ना लोग तो आज रे दिन का ही है कि आपने संवाद और विकास रो सांस्कृतिक विविधता रो विश्व दिवस मनाई
0: और कहो मुतबल है
1: इरो मतलब ओ है कि आप विकास तो खूब कर रही है आगे खूब बढ़ रही है रुपये पैसा कमा रही है लेकिन अपनी आपसी जगह बातचीत है संवाद है वो तरोतर कम हो रही है ना खातर आज रे दिन 21 मई रहे के भाई विकास और संवाद रो सांस्कृतिक विविधता यानी आप अलग अलग लोग
0: हम घरे बात के भाई बारे में कोई खाउन कमाऊ जाओ क्या कोई भाई से आवे कोई कटू दूज जगू तो बहु है जो
1: बातचीत करो और अपना रीति रिवाज सांस्कृतिक धरोहर है ना बिन एक दूसरा ने बतौर आप हगड़ा एक बन रहे हो।
0: अरे वो तो भाई ये भाई देखे सात समंदर आ गए नी संसार में कटू कोई है जो सैलानी आवे के तो हूँ पहला बारे रहते जिसे हूँ मारी सेवा करतो बहु मीठो बोलतो।
1: अच्छा
0: और कई बात होती क्या है कोई झगड़ा टंटे वाला काम काज होता कोई है जो क्या नहीं कोई क्या देश ने नुकसान उगवनाला कोई काम होता नहीं तो बा मैं हूँ सजग रहते
1: अच्छा।
0: दो बार हूँ कई है जो आतंकवादी ने मैं पकड़ाया
1: आतंकवादी
0: हाँ मैं कोई हन छान छान
1: तो कुल मिलाए थे इंटरनेशनल टेररिस्ट मैटर में तो पूरा ध्यान दो।
0: अरे हूँ तो क्या नहीं कर रेल में बैठता तो कोई जे मन कोई थेलो दूजो दिख जाते तो हूँ फट देनी रेल में लागोड़ा है पुलिसिया बन हूँ कह दे तो हाँ
1: ओहो पकड़ा यार कई बार
0: तो आई तो कू रे भाई देखे कटी कोई चीज बूझदारी पड़ी हुए तो उन्हें हज सूचना इतना देनी जरूरी है
1: तो थे जकिया बात करो ना नवलबा आज अपने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है
0: यूं हाँ कोई आतंक फैलाओ तो वह कोई ज्ञान देश ने नुकसान पुगो नाड़ो है नी तो रामेश्वर हाउसे राग ना पुख्ता जो नहीं इतला बस सरकार देनी पुलिस ने देनी
1: आपने तो कोई भी गलत काम हो तो देखो ना जन थे मैंने एक बार नंबर लिख आया 100 मिंडी मिंडी 100 नंबर
0: हाँ 100 नंबर
1: थैंक यू कोई गड़बड़ हुए 100 नंबर दबा देना
0: हाँ 100 नंबर उन दाते ही मैं पुलिस वालों में बात हो जाए कोई चीज वैसे बता दो तो कुन कहीं है भाई देखे कोई और कह के भाई एडो कोई काम वह नहीं नुकसान वालों वो है जो नहीं हो सके
1: एक मैंने बड़ी कह भाई की 4-5 साल पहले री बात है आप ढाणीगन 2-3 एला कोई मोटियार फिरिया जो को जानकारी पूछी थाने फौज आवे कहीं पुलिस कितना कहीं हेर पच गया के मैं शाम रात ही करती थार बा ने बताई दिया दो दिन में ठेलो ले आया जो थार बा तो पुलिस बुला लिया अरे मैं क्यों आने क्यों पकड़ा अपन ध्यान पड़ी हो मैं तो संदिग्ध लोग
0: हाँ कोई बारू आई जा रहा फिर हूँ छोड़ू
1: थाने की कर ध्यान पड़ी
0: पड़े हूँ गलत मुलक संसार में फिर संसार मारे घणो देख जोड़ो भाई
1: तो थे तो नवला बा कौन है मैं चलता आदमी री चाल देख बताए दो चाल चाले
0: कटर है वो पागरा रो है वो है जो कह नहीं क्या पर थली रो है दोरा रो है
1: और इर मन में कहीं है
0: हाँ वो है क्या पड़े मने ले मैं यूं है कोई बातें ही बातें करे कोई वो है जो कह नहीं साड़ी भनगी सारे और चाय पी ले मने एक बढ़िया मीठो गीत सुना दे
1: चाय माते
0: हाँ चाय माते कौन संसार माते
1: अच्छा संसार माते
0: हाँ संसार वाला कोई गीत सुनाई नहीं तो पद कही है चाय थारे
1: अरे संसार वाला गीत रे मैंने टोपी मुचारो तावर हगली बात है भी मैं
0: यूं
1: हे
0: ओ होना भाई
1: लो होनो
2: धागिना धिनक तिन का भैया।

पर नाचे जा धागिना धिनक तिन तागिना तिनक तिन धागिना धिनक तिन ता थैया धागिना धिनक तिन तागिना तिनक तिन धागिना धिनक तिन वा भैया जब तक ये संसार न चाहे झूम झूम कर नाचे जा धागिना धिनक तिन तागिना तिनक तिन धागिना धिनक तिन ता थैया धागिना धिनक तिन तागिना तिनक तिन धागिना धिनक तिन वा भैया अरे वाह मेरे बांके नाचो इसी लटक से लचकाओ रे कमरिया उधर और मटक के जग तुझको हंसे तो चल सर को झटक के जरा और मजे में कर ठुमक ठुमक के सर पर टोपी लाल सजाए सर पर टोपी लाल सर पर टोपी लाल सजाए मूछ तान कर नाचे जा धागिना धिनक तिन धागिना तिनक तिन धागिना धिनक तिन ता थैया धागिना धिनक

0: इनमें एक बात है, गीत तो बढ़िया है
1: हाँ।
0: पर बात है रामेश्वर के कोई अपन पोती धोती वाली बात तो करी कोनी, पर खैर के कोनी
1: हाँ।
0: हम बता विगत बात टेम घनी होगी।
1: अरे टेम कहीं होगी, आज जगी चाय पाई होनी जगी मारवाड़ी रजवाड़ी चाय उकाल और बड़ी बनाई लाई ना, तो आज नवलावा अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी है।
0: हाँ चाय तो हमें क्या नहीं है, इतना प्यालो है चाय माता तो कई बात है कि चाय चाय माता छत्रपति पिए सब गर्भपति
1: अच्छा,
0: और बड़ाओ बड़ाओ जीते मरो मती
1: हाँ।
0: और चाय कह रहे हम मन कई बात आवे अरे हम रहे मन होना दे विगत बार
1: तो विगत बात आने बात जानकारी देव ना, तो सब पहले अपन नाम है बहुत ही मोटो नाम है शरद जोशी जी, और आज है जगियारी जयंती है, और आने कौन नहीं जाने हिंदी जगत रा प्रमुख व्यंग्यकार हुआ, मतलब टोंटर में बात कहनी
0: कोई कह नहीं भाई इशारे कहता
1: हाँ इशारे कहता
0: हाँ, कोई है जो कहे भाई है नहीं करता रे
1: जयंती है
0: वह तो आने कहो मुबारकबाद देनी है।
1: नहीं नहीं आने मंदिर फूल चढ़ा
0: वाह भाई की कौन मंदिर फूल चढ़ाओ कोटी कोटी नमन करा
1: हाँ
0: बड़े
1: आगलो नाम है सुंदरलाल जी, आरी भी आज है जगह जयंती है, और भारत रा बहुत ही मोटा न्यायविद शिक्षा शास्त्री आ, और ए आपने न्याय जगत कानून कायदान लेर बहुत काम करियो।
0: अरे अंत वकील साहब कहता अरे वकील साहब आज पुख्ता काम कर किया चौका करिया
1: हाँ।
0: देखो आज क्या क्या न्यावरी नींव मजबूत हो रही है,
1: मजबूत हो रही
0: कोटि कोटि नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: आगलो नाम है जकार मैं मन लागे थे दिल्ली दो चार बार गया जना वो मिलियोड़ा हो, नाम है राजीव गांधी साहब।
0: ओ राजीव गांधी
1: पूर्व प्रधानमंत्री अपन भारत रा।
0: अरे भाई फूटरा करडा हार क्या नहीं मैं तो जुग पुरुष हा
1: मारी आज पुण्यतिथि।
0: अरे हाँ भाई बे उठे गए जो कह दिखड़ा दे पेरुम्बदूर में बे बम्ब में बन उड़ा दिया और पण बे देश रे वास्ते संचार क्रांति करी कंप्यूटर दूजा लाया और घना कह नहीं के मिनका ने बे है जो कह हारो दियो
1: छोटी उम्र में 40 साल में प्रधानमंत्री बन गया।
0: अरे पूट रहा भाई इंदिरा जी ने बेटा आ गए तो बे देश रे कह तरक्की में घणो भागीदारी राखी आज जगी चीजा थे देखो हनी बे उन टाइम रा बारे राज में आई
1: सही बात
0: और ओची उम्र में गया प्राण काम चौका कर्म गया तो भाई दे गया नहीं कोई नहीं भूल सके पर बातें पर धोख देवा कोटि कोटि नमन करान मंदिरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: सुंदरलाल जी बहुगुणा साहब है। और ए देखो कि आप आज आनी नवलाबा पुण्यतिथि है और जो आपने पर्यावरण ने बचाउंडो जो चिपको आंदोलन होना बीरा प्रमुख नेता हा और हिमालय रे पर्वतीय वना ने संरक्षण देवन खातिर बहुत लंबो जीवन संघर्ष।
0: हाँ भाई देखे सुंदरलाल जी बहुगुणा हूँ मिलियोड़ो हूँ और जद कहीं हो
1: देखो तार हाथ फोटो है।
0: अरे भाई आप फोटो है तार कोई ख्याल जुड़ी वेला पर हूँ को भाई कहूँ योग बे जद अब उठे के हिमालय में रूंगड़ा बड ढूंगा जद बे यार एकर कटी मिली आज मैं कर साहब मारे उठे जोधपुर में है जो को कह नहीं खेजड़ी में है जो कह एक बो हुयो
1: आंदोलन हुयो यहाँ को
0: 363 है जो नर नारी है नी मैं रूंगड़े बात है आप रा कह नहीं माता दिया
1: ठीक है
0: तो बात नहीं हूँ बने है जो कहनी
1: बताई
0: बड़े पेपर कोई आपने पढ़ी लिखी करी
1: हाँ
0: जब मैं

0: அப்புறம் உத்தரவாதத்தை பாக்குறவன் இன்னும் கூட சீப்பன் டூங்கா
1: आगलो नाम है जानकी देवी बजाज और नवलाबा आज आनी पुण्यतिथि है और ये भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता ही और जकी सभीज्ञा अविज्ञा आंदोलन रे मैंने जेल रे मैंने बंद रही होनी।
0: अरे भाई ये जमुना लाल जी बजाज आके
1: हाँ
0: बारे है कलुम्बे भी
1: जोड़ा
0: था
1: हाँ,
0: गांधी जी रा बेटा धर्मेला बेटा है
1: हाँ,
0: तो मोटो घरानो होते हुए भी बे जितनी कह देश रेवाते काम करियो
1: अने पद्म विभूषण मिलियो।
0: अरे मेरे भाई देखा अत्याचार सहन करिया जुलम सहन करिया
1: हाँ,
0: आज मोटा घराना रा मैंने मुंडू ही बारे को काटे इन बे देश री आजादी रही
1: हाँ,
0: तो अड़ा मिन कान कोई नहीं भूल सके पर बाते पौर धोख देवा कोटी कोटी नमन करा मंदिर रा फूल चढ़ावा
1: नवलाबा तो थानी कोई पद्म भूषण विभूषण थानी दिरावा
0: मार तो कोई जरूरत कौन भाई मार रहे
1: हैं भी तो कितो संघर्ष करियो डाणी डाणी रमाइने ते रोड़ा बनाए दी बिजली ले आए दी हॉस्पिटल बनाए दियो
0: सरकार बनाई भाई मैं तो ठीक
1: सरकार बनाई लेकिन थे कितो संघर्ष करियो मैंने बड़ी कह होती थार बा है नी सुबह 4 बजे कांदो 2 बाजरी रोटियां और 1 टिफिन दही ले सुबह जामता पानो ले सरकार ने अर्जी दो ने मार ढाणिया रो विकास करतो।
0: अरे हाँ घर गियो भाई कुदरत कराई जन गियो
1: हाँ
0: बात कह नहीं हिम्मत ही नहीं बात ही जिद करी जो नहीं तो कर कर आज मारू मैं कह नहीं
1: आज तो ढाणी बैठा रही सरकार थानी हुने बचे
0: वाह हुने तो के कोनी
1: हाँ
0: मैं मारी हूँ भाई थारू तो वह कोनी मारे एक बढ़िया कोई छोको जिस युद्ध होना
1: बढ़िया एकदम
0: हाँ बढ़िया
1: ठंडो टीप
0: लो
1: हुनो

0: वाह भाई रामेश्वर रेडिया
1: जी हो वही बता रहे
0: हो भाई मार तो कह नहीं क्या
1: आ, घड़ी कौन पे रही हो इतनी फूट रही
0: अरे घड़िया कई घर को कह नहीं घड़िया गीपरी और हमें देखे बात है कि भाई देखे हमें बेलू वेलू थे धनी जा नहीं करो
1: नहीं नहीं बेलू तो धान दिया ना आया बाद रे मैंने तो बच्चे खाया भी लूटा ही कोनी
0: हाँ बहुत कह नहीं के
1: शीर संस्कार दीवड़ा है
0: थार तो आया भूको ने
1: क्या बर भूको
0: रामेश्वर भूको क्या की कौन नजर तैयार करो
1: हाँ
0: और हूँ है जो कर देते फेर दू माड़ा
1: ठीक है
0: और माड़ा फेर बैठो हूँ तो एकदम कह नहीं की भाई बेलू तैयार कर दो
1: बिल्कुल
0: थारे मन आवे जी को बनवा दो और हमें देखे तारे खासा ऊंचा आएगा अंदाजी होगो प्रोग्राम टाइम होगो पूरा तो भाई से लेवा ही राम राम
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, शाम के 8 बजने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गाना, जसपिंदर नरूला की आवाज, जावेद अख्तर के बोल और जतिन ललित का संगीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत, विशाल डडलानी की आवाज, अन्विता दत्त गुप्तन के बोल और विशाल शेखर का संगीत।

इससे पहले आप सुन रहे थे फिल्म कल हो ना हो का गाना, वसुंधरा दास के शान और लोए मेंडोसा की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लोए का संगीत।

और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म दिल चाहता है का ये गाना। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

आप सुन रहे हैं बंटी और बबली का ये गाना। शंकर एहसान लोय का संगीत, गुलजार के बोल, अलीशा चिनाय और शंकर महादेवन की आवाजें।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है समाचार संध्या और न्यूज एट 9 का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

0: में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और

0: समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
4: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरुरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को

0: संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
1: Highlighting the role of MSMEs in strengthening global supply chains, Mr. Goyal said that the government has initiated coordinated efforts to support technology upgradation.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने सुना मेहंदी हसन को। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर रात के 9:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म कृष्णा कॉटेज का ये गाना। श्रेया घोषाल की आवाज, निलेश मिश्रा के बोल, अनु मलिक का संगीत।

रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं फिल्म अनवर का ये गाना, सैयद कादरी के बोल, मिथुन का संगीत।

फिल्म संगीत के आखिर में आप सुन रहे हैं फिल्म कभी अलविदा न कहना का ये गाना। सोनू निगम, अलका याग्निक, वसुंधरा दास की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लोय का संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना अंग्रेजी कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं नमस्कार। नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में हम आपको अपनी मरुभूमि के ऐसे कलाकारों से, ऐसी डिग्निटी से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र के लिए महान कार्य किए हों, इस क्षेत्र की कई उपलब्धियां हासिल की हों। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे पद्मश्री, यानी अभी हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, माननीय तगाराम जी भील हमारे साथ हैं। और बचपन से लेकर आज तक अनेकों संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इनका संघर्ष और इनकी कला से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। तगाराम जी, हम बहुत बहुत अपने श्रोताओं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार।
0: और हम शुरू करते हैं आपका वो बचपन। देखिए तगाराम जी, जब बचपन होता है ना, तो माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि ये पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बने, कोई अफसर बने, लेकिन आपने बचपन में ये अलगोजा पकड़ा, तो ये क्या परिस्थितियां रही कि आप अलगोजा आपके हाथ में कैसे आया और कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी?
1: जी हुकुम, मैंने मेरी जब कम छोटी उम्र में, मैं जब 6-7 साल का था, तब से मेरे पिताजी के पास एक ऊंट था और 4-5-7 बकरियां थी और एक अलगुजा की जोड़ी थी जो पिताजी पहले पुराने टाइम में लाए थे, वो कोई सिंध से मंगाया था, पाकिस्तान से। तो वो अलगुजा मेरे पिताजी बजाते, ये क्या कि पहले बनते ही उधर सिंध में ही थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मैं वो बकरियों के साथ मेरे को पिताजी भेज देते थे और मेरे पिताजी क्या कि लकड़ी ऊंट पे लकड़ी भेजते थे, शहर में लेके आते थे। उस टाइम में मतलब बहुत 70 की बात कर रहा हूँ, 70-71 की।

0: की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस टाइम में मैं क्या कर, पिताजी के अलगुजे रखे हुए तो चुपचाप उठा करके बकरियों के साथ
1: ले जाते थे,
0: ले जाता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी माता जी है वो मेरे को कहती थी कि बेटा ये तुम तेरे पिताजी बाप से आएंगे तो अगर तोड़ दिया तो उसको तुम तुम्हें मारेंगे। तो मैं को नहीं तोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करते करते मेरी वो टाइम में मैं बकरियों के साथ बकरी चराते हुए खेलते हुए उस टाइम में 3-4 साल की उम्र में मैंने
1: शुरुआत की थी। अच्छा, जब आपने अलगोजा बजाना शुरू किया था तो आपको क्या उम्मीद थी कि ये कला एक दिन हमको उस पुरस्कार को दिला देगी जिसके लिए लोग यूं कहते हैं कि बहुत सारी मेहनत करते हैं तब भी नहीं मिल पाता? क्या उम्मीद थी कि ये कला आपको कहां तक लेके जाएगी?
0: तो उस टाइम में तो 6-7 साल की उम्र कितनी होती है, उस टाइम मैं ये सोच भी नहीं सकता था। वो तो मेरे लिए एक खिलौना था कि मैं खेलता था उसके साथ, जो बजाता था मेरे पिताजी, मुझे अच्छा लगता था ना, तो मैं भी उनको कोशिश करता था कि मैं भी बजाऊं। तो इस तरह से ये कहानी चलती रही। और मैं जब 3-4 साल तक मैंने मेहनत की तो 10 साल की उम्र में मैंने मेरा सांस वगैरह वो लेना, सांस को चलाना सीख गया। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा, जो औरतें शादियों में गीत गाती हैं, जब कभी शादी होती थी वो शादियों में बैठ जाता तो उनका गीत गुनगुनाता था, तो वो गाते गाते थोड़ा गीत भी गुनगुनाने लगा 4 साल के बाद में। तो ऐसे करते करते मेरा जीवन जो शुरू हुआ, जैसे मैं 10-12-13 साल का हुआ तो फिर मेरे को पिताजी कभी लकड़ी तोड़ने भेज देता था तो भी साथ में रखता था। तो कभी पत्थरों का, जब 15 साल का हुआ तो फिर पत्थरों का काम था, पत्थर भी तोड़ता था तो भी मैं अलगुजा साथ में रखता था। जहां भी बकरियों में जाता, पत्थर तोड़ने जाता, कहीं भी जाता, मैं साथ में रखता था। इतना शौक हो गया था इनसे मेरे को।
1: मतलब आपका अलगुजा के प्रति जो लगाव था
0: जी,
1: और जो साधना थी
0: जी,
1: और वही कारण रहा कि आज भी अलगुजा आपके साथ है और दुनिया में आपने इस कला को यूं कहें कि अपने अलगुजा के माध्यम से पहचान दिलाई है। अच्छा, थोड़ा हम इस वाद्य यंत्र की बात करें
0: जी,
1: तो ये क्या है? हम जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं तो ये अलगोजा एक बांसुरी जैसा देखने में होता है, तो बांसुरी में और इसमें क्या फर्क होता है?
0: बांसुरी का जो होता है ना, वो छेद ऐसे होता है जैसे यूं बजाते हैं, यहाँ पर होता है यहाँ पर, और इसका जो जैसे इधर मुंह बना है, इसकी जीभ भी बनी है, इधर जैसे सांस लेने के लिए ये भी बना है, नाक भी बना है। तो ये मतलब पूरा जैसे गला और जुबान और सब कुछ इसके अंदर उस हिसाब से बन गया है। तो इसका एक गला बन गया, इसके अंदर मतलब हवा जैसे सांस डाल दिया, तो इस तरह से ये हो गया।
1: अच्छा, बांसुरी तो सिंगल होती है, ये दो एक साथ होते हैं वाद्य?
0: हाँ, ये दो।
1: अच्छा, दोनों में क्या अंतर होता है?
0: दोनों में एक दूसरे का सहारा बनता है। ये जैसे ये पकड़ के रखता है, बैस को पकड़ के रखता है, तो ये साथ में सुर को पकड़ता है, मतलब सुर इधर उधर ना हो तो इसको पकड़ के रखता है, तो उसको उसमें थोड़ा अच्छा लगता है। दोनों का साथ में एक बीन जैसा आवाज निकलता।
1: अच्छा, अच्छा, दोनों की अलग अलग ध्वनि होती है ना? अच्छा, दोनों एक बार बजा के बताएंगे क्या अंतर है इनकी?
0: ये बोर सा जैसा होता ना, तो ये तो नीचे की सा चलाता है, ये ऊपर वाली।
1: बिल्कुल, मतलब ये उच्च स्वर और वो जो लो स्वर होता है बेस, जिसको बिल्कुल ठीक काम।
0: तो क्या जैसे एक बड़ा आदमी गा रहा है, एक बच्चा गा रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो उस तरीके से ये राग ऊपर नीचे,
1: बिल्कुल
0: एक ऊपर की सरगम एक नीचे की सरगम।
1: अब कौन सा जो सुर है गाना कोई निकालना है इसके माध्यम से, तो आप बदलते हो कि ये उधर वाले में बजेगा या इधर वाले में? बहुत कठिन कला है ये।
0: हाँ, मतलब इसमें भी हवा को कंट्रोल से
1: पूरा दोनों में अलग अलग करना,
0: दोनों में हवा कंट्रोल से।
1: बिल्कुल, देखिए श्रोताओं, जो ये दोनों वाद्य यंत्र अलग अलग, इनकी ध्वनियां एक में बेस है, एक में यूं कहें कि जो उच्च स्वर होता है वो है। अब ध्वनियों को दोनों एक ही मुख के माध्यम से दोनों को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करें, जो देखिए कोई भी वाद्य यंत्र होता है तो बिना गुरु के उसको सीखना बहुत मुश्किल होता है।
0: सही बात है।
1: तो आपका, हम गुरु आप किसको मानते हो, ये जो बेसिक चीजें किसने सिखाई?
0: जैसे गुरु तो ऐसे शुरुआत में माना तो पिताजी गुरु है, क्योंकि अगर पिताजी नहीं बजाते तो मेरे को मिलता ही नहीं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो गुरु तो वही हो गए, लेकिन एक विद्या गुरु भी होते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो जैसे मैंने जब बजाना सीखा, जब 17-18 साल की उम्र हो गई मेरी, तो उसके बाद में जब मैं, किसी ने शहर में सुना कि भाई कोई अलगुजा इधर बनाता है, बजाता है, तो उस टाइम एक धने खान, एक बांदा खुयाले से एक आता था, वो भी बजाता था, तो मेरा भी नाम सुना तो

0: एक दिन क्या कि अपने जिला जनसंपर्क अधिकारी शंभुदान जी रत्न उस टाइम में नेहरू योग केंद्र में वो कोई प्रोग्राम करवा रहे थे, तो उस टाइम मेरे को 15 अगस्त की मौके पर मेरे को बुलाया, और वो अकबर खान जी मंगनियार थे, ये आलम खान दरबारी, वो उनको उनके साथ वो लेके आया, और अकबर जी और दोनों में पता नहीं वहां में हमारे ढाणियों में कहीं रहते थे हम, वहां मूल सागर से बाहर जंगलों में ढाणियों में रहते थे, घर नहीं था हमारे पास, पिता के पास घर था नहीं, कुछ नहीं थे, ऐसे झाड़ियां काट करके झुपड़ी बना करके जंगल में ही बैठे होते थे। तो वहां पहुंचे, वहां पूछे कि आपका बेटा के अलगुजा बजाता है, तो हाँ, तो कहाँ है, तो वो तो बकरियों के साथ में। तो मैंने को कहीं वहां से ढूंढते ढूंढते देख वहां ढूंढ लिया, और तो फिर मेरे को बोला कि आपको प्रोग्राम में ले जाएंगे वहां पर, आज 15 अगस्त का प्रोग्राम है, कलेक्टर के सामने प्रोग्राम करना है। तो मैं को भाई प्रोग्राम कैसे करते हैं, तो प्रोग्राम अलगुजा बजाना, तो अच्छा, और तो कुछ नहीं, और मेरे को प्रोग्राम नहीं आता, अलगुजा में बजा लूंगा। तो इस तरह से मैंने बात किया, क्योंकि समझ में नहीं था, प्रोग्राम था ही नहीं उस टाइम। तो फिर वो वहां से शुरुआत हुई मेरे 1981 में।
1: ओ, बहुत पुरानी बात है।
0: हाँ, तो उसी टाइम 81 में ही फिर वो अपने डेजर्ट फेस्टिवल, वो भी
1: उसकी शुरुआत हो चुकी थी उस समय।
0: तो फिर 82 में मेरा नंबर लगा उसमें।
1: अच्छा, वो 15 अगस्त का जो आपने बताया, पहली बार आपने कलेक्टर साहब के सामने जो अलगोजा बजाया था, तो उस समय कोई हिचक थी, और कौन सी ध्वनि बजाई थी, थोड़ा हमें उसका याद है आपको, क्या बजाया था आपने
0: उस टाइम में? ये तो जैसे मोरूबाई, ये नए नए गीत उस टाइम, पुराने गीत यही चलते थे, मोरूबाई, एवड़ का गीत है मखणो मखणो डोरे मखणा डो थार खेत में खेजड़ियो मखणा दो,
1: वो वाला
0: ऐसा, क्योंकि ये एवड़ चराते समय बजाया जाता है, ये सभी जो
1: मतलब जो हमारे लोक गीत है राजस्थान के, उन पर आधारित वो ध्वनियां थी।
0: जैसे
1: थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाएंगे, वो जो पुरानी लोक धुने थी जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, वो जो कहते हैं माखड़ियों या सुनाओ थोड़ा सा।
0: तो ये मतलब जो एवड़ चराते, भेड़ बकरियां, गाय भैंस चराते समय ये गीत गाते चलते थे वहां पर, तो मखणा सुनाता, दो मखणा दो, मारे डबियो ढल गई छांगड़ ली रे मखणा दो दो छांगड़, मतलब वो
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत ही खूबसूरत, देखिए हर कोई इस ध्वनि पे झूमने लग जाए, ऐसी ध्वनि आपके अलगोजा की। और हम श्रोताओं को बता दें, देखिए ये आपने बताया कौन सा गीत,
1: मखणो
0: मखणो, और इसका अर्थ है कि जब छांग चराते हैं ना भेड़ बकरी, और रेत के पहाड़ों के दूसरी तरफ चली जाती है कि ढल गई, मारवाड़ी में हम कैसे बोलेंगे कि वो ढल गई हमारी
1: हमारी छांगड़ी, डिबियो ढल गई, छांगड़ी
0: डिबियो ढल गई,
1: दो रे दो, बस वो ये मतलब चराते हुए समय ये गीत गाया।
0: हाँ तो ये वो खूब इसका, देखिए जितने की लोकगीत हमारे राजस्थान में हैं उनका जो अर्थ समझ लेंगे ना तो और ही उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो उस समय ये गीत बजाया जाता था। अच्छा हम बात करें आपकी कि ये कला, आप फिर डेजर्ट फेस्टिवल आया और डेजर्ट फेस्टिवल के माध्यम से ये कला ना सिर्फ हमारे पूरे देश में गई बल्कि जो बाहर के विदेशी पर्यटक आते थे उन्होंने इस कला को बहुत सराहा, और फिर जब बाहर जाने लगे तो बाहर के प्रोग्राम आपको कैसे मिले?
1: बाहर के पहली बार मेरा प्रोग्राम हुआ था, मैं 1996 में गया था, तो उस टाइम पहली बार राजस्थान टूरिज्म ने प्रोग्राम दिया था, राजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ थे जैसलमेर में, उन्होंने मेरे को और तृप्ति पांडे जी ने उन्होंने मेरे को भेजा था, टूर एक करवा था, तो एक नॉन्थ फेस्टिवल था फ्रांस में, तो उस फेस्टिवल में गया था मैं, तो उस फेस्टिवल में कई कलाकार साथ में थे, तो उस टाइम में वहाँ पर जो लोग सुने मेरा अलगुजा पहली बार सुना ना, तो रात को हमने जब

0: शाम को प्रोग्राम किया तो दूसरे दिन स्कूल वाले आ गए कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम करना है, बच्चों को दिखाना है कि भाई कैसे ये हमारे नया नया जो ये अलगुजे वहां पर होते ही नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो इसलिए फिर वो स्कूल का प्रोग्राम रखा तो बहुत ही लोगों ने सराहा, बहुत ही अच्छा वहां पर मान्यता, बहुत ही अच्छी हमारे अलगुजों के लिए, बहुत ही सबके कलाकारों के लिए बढ़िया रही। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो है दो एक साथ बजाते हैं तो उनको अचंभा होता है कि दो को
1: कैसे बजा लेते हैं। बिल्कुल
0: बड़ा ही लगा उन लोगों।
1: और अच्छा तकाराम जी, एक और जो विदेशी लोग, तो देखो आपकी भाषा अलग उनकी अलग, लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, है ना।
0: बस
1: अच्छा कभी उन्होंने, उनके वाद्य यंत्र होते हैं तो प्रयास किया कि इसके साथ हम कहें कि जो संगत करते हैं ना, ऐसा कभी मौका मिला?
0: हाँ वो कभी कभी, जैसे अब फिर मैं दूसरे टूर में गया था, 3 महीना रहा था मैं यूरोप में, तो हम वहां पर कई अंग्रेज है जो कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, तो वो मेरे साथ बैठ जाते थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: हाँ, और कई साथ जैसे जो गिटार की तरह सारंगी की तरह, ऐसे अपने यहाँ सारंगी कमाचा होता है वहां पे अलग अलग है, तो लोग कई
1: बजाते थे
0: साथ में बजाते थे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगता था।
1: अच्छा फिर उन्होंने कई जो सीखने का प्रयास करते हैं अच्छा लगता है, तो आपका जो घर है वहां पर आप कुछ लोगों को सिखाया भी आपने, तो बाहर के लोग भी आते थे, तो वो कितने दिन में क्या कुछ सीखे गए क्या इस कला को?
0: हाँ खूब। आज मैं जब मूल सागर में पहली बार मैंने वो एक झोपड़ा बनाया था, उसी टाइम में जैसे मैं ढाणी में रहता था तब वहाँ लोग के रास्ता नहीं था, आ भी नहीं पाते थे, तो तब रोड से रोड पर बनाया ना, तब लोग वहाँ सब घूमने जाते तो आते समय उनको सबको पता होता था कि यहाँ पर तकाराम अलगुजे बजाने वाला रहता है, तो गाइड वगैरह वो साथ में ग्रुप के साथ वो आते तो आ जाते थे। फिर मेरे साथ एक पहली बार एक फ्रांस का एक बंदा आया था, तो दो भाई आए थे, तो एक वो बांसुरी बजा रहा था, तो उन्होंने दो कहा कि भैया ये नई चीज है मेरे लिए, उन्होंने सुना तो वो कह रहे मेरे को भी खरीदना है, तो उसी टाइम मैंने अलगुजे बनाने ही शुरू कर दिए थे, मैं खुद बनाता हूँ।
1: अच्छा आज आप ये खुद बना रहे हो?
0: हाँ खुद बना रहा।
1: अच्छा अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है?
0: ये तो केयर की है, जो है पीली है, व्हाइट लग रही है, और ये है शीशम की।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लकड़ी यहाँ पे मिलती है या बाहर से मंगानी पड़ती है?
0: ये तो यहाँ भी है लेकिन अभी यहाँ भी कम मिलती है, लेकिन बाहर से ही है। मैं अभी गया था कश्मीर, गया था तब वहाँ से लेके आया।
1: ओ कश्मीर का शीशम,
0: पठानकोट से लाया था ये लकड़ी।
1: अच्छा देखिए तकाराम जी, प्रत्येक जो माँ बाप होता है वो चाहता है कि अगर आपकी जो कला है इसने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं, तो ये आपकी परंपरा बने, आपके पिताजी से आपने सीखा, और फिर क्या आपके बेटे भी इसको बजा रहे हैं?
0: हाँ एक बेटा बजा रहा मेरा मुकेश, वो बाकी बड़े वाले तो वो नहीं बजा रहे, वो पत्थर का ही काम करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: मजदूरी पत्थर में ही करते हैं, और एक मुकेश है वो बजा रहा अभी। हाँ। तो कई बार मेरे साथ भी बजाया है, मैंने कई बार ले भी गया।
1: मतलब ये कला आगे आपके परिवार में आगे और बढ़ेगी और ऊंचाइयां छुएगी। अच्छा देखिए पहली बार जब आपने डेजर्ट फेस्टिवल, एक बड़ा मंच है और वहां पर जब स्टेज पर गए थे, तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था, क्या नर्वस थे या खुशी हो रही थी, वो वाकया बताइए।
0: वो डेजर्ट फेस्टिवल में कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे साथ मटके भी बजते थे, ढोलक भी बजते थे।
1: हाँ।
0: तो जब अलगोचू की लहर चलती थी ना, तो अंग्रेज है वो वहां पर बैठे बैठे उठे उठ के नाचने लग जाते थे।
1: क्या बात है।
0: तो वो मतलब इतनी, मतलब वो अंग्रेज की धुनी पर लोग आकर्षित होते थे। तो बहुत ही मतलब इस साज जैसा मेरे को तो लगता है कोई मीठा और साज,
1: बहुत मीठा बिल्कुल।
0: तो इसलिए अच्छा। मैंने अभी जिंदगी में जब से मैंने इसको सीखा है तब से मैं अभी भी दिन भर यही काम करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ।
1: अभी बना रहे हो?
0: हाँ, मेरे कई स्टूडेंट अभी दिल्ली में भी 4-5 स्टूडेंट है मेरे, वो भी सीख गए। जापान के भी आए थे, वो भी मेरे से 2-3 बंदे सीख गए। अभी स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, कई जगह इटली में, सब जगह मतलब क्या बताऊं, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राजील वगैरह सब जगह मेरे से जुड़े हुए लोग हैं जो सब सीखते हैं। अभी ऑनलाइन भी मेरे से कभी कभी जानकारी लेते हैं तो मैं दे देता हूँ।
1: अच्छा जो हमारे परंपरागत लोक गीतों की धुनें तो आप बजाते हो, हमारे जो आधुनिक गीत हैं, कुछ देशभक्ति के गीत हैं, तो आपने कौन सी रचनाएं तैयार की हैं? कोई आपको बहुत खूबसूरत जो हमारी देशभक्ति की रचना आपने अगर तैयार की है तो वो सुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए।
0: ठीक है, थोड़ा एक लाइन सुनाऊंगा मैं गीत।
1: कौन सा आप सुनाएंगे?
0: देशभक्ति। अब
1: मेरे वतन के लोग।
0: नहीं नहीं, तुझे सूरज कहूं या चंदा।
1: क्या बात है। हाँ ये चलिए सुना।

0: बहुत खूबसूरत। ये इतनी मीठी ध्वनि जो संगीत है हमारा, हर किसी को झूमने को मजबूर कर देता है। और इतनी अच्छी अलगोजा की जो मीठी ध्वनि आप बजाते हो, इसी के कारण आज ये अलगोजा विश्व के पटल पर और भारत में ही नहीं विदेशों में भी गूंज इसकी सुनाई दे रही है। और आज आप हमारे जैसलमेर के एक पद्मश्री बने हैं, आपको अवार्ड मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है जो सरकार ने आपको सम्मानित किया है, सचमुच हमें गर्व है आपके ऊपर। आगे की क्या योजना है कि इस, आप क्या चाहते हैं कि इस अलगोजा को और ऊंचाइयां किस प्रकार से दी जा सकती हैं, आपकी क्या इच्छा है?
1: अब आगे मेरी इच्छा यही है कि अभी तक मैंने जब से अलगोजा बनाने सीखे उसको मेरे को बनाते बनाते 30 साल हो गए। तो 30 सालों में मैंने जो मेहनत करी है इसकी बनाने की, वो मैंने अकेले ही करी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है, और कोई मेरा साथी नहीं है। मेरा बेटा है तो वो ठीक है, घर पे रहते हैं, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई बनाने वाला कोई आदमी तैयार है, नहीं है। लेकिन एक आदमी एक मेरे पास है, हमारे भीलों में ही है, एक अरदास नाम है, वो लड़का आया था तो मेरे पास बैठता था, तो वो भी अब थोड़ा बहुत बनाना उनको आ गया है। तो लेकिन वो जैसे मैं बनाता हूं उस हिसाब से जब उनसे बनता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि अभी जो सरकार ने मेरे को सम्मानित किया है, मेरे को भारत सरकार ने जो सम्मान दिया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और सब लोगों का, यहाँ जैसलमेर के लोगों का, यहाँ के मीडिया के लोगों का, आकाशवाणी जो भी है, दूरदर्शन है, मतलब डेजर्ट फेस्टिवल है, सभी जिस लोगों ने मुझे बुलाया, मैं उसका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको। और भारत सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ये पद्मश्री के लिए सम्मानित किया है।
0: और बिल्कुल, अगर हम आपके जो सफर की बात करें, जैसलमेर से निकल करके अब तक आपने कितने देशों की यात्रा की है?
1: मैंने हिसाब लगाया, मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 35 देशों की यात्रा,
0: 35 देश ये अलगोजा आप लेके गए हो उन 35 देशों में। ये बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ हमारे जैसलमेर के लिए, इस वाद्य यंत्र के लिए और आपके लिए भी। अच्छा देखिए, कोई भी वाद्य यंत्र जब इतनी ऊंचाइयां छूता है तो एक जो उसके ऊपर प्रति लगाव है जो आपका, तो आप चाहते हैं कि और आगे बढ़े। अगर जैसे सरकार आपको कोई सुविधा दे, जैसे आपका जहां पर घर है एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का, तो वहां आप क्या चाहेंगे, क्या क्या सुविधा आपको दी जाए कि आप आने वाली पीढ़ी जो इसको सीखना चाहते हैं वो वहां आकर इस वाद्य यंत्र को सीख सकें?
1: बस मेरी तमन्ना यही है, मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे जैसलमेर जिले में इसमें ऐसा बनाने वाला कोई है नहीं, तो मैं अब चाहता हूं कि मेरे पास संस्था है, रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, तो क्या अभी उसको अच्छे से चलाने के लिए मुझे सरकार की मदद अगर मिल जाएगी तो मैं और इसको और अभी 35 देशों की यात्रा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा ये
0: और भी देशों में आगे जाए,
1: और भी देशों में आगे जाए, ताकि अपना ये साज है जो अपने देश का बहुत नाम रोशन कर रहा है, ये सभी जगह ये इसकी मांग है इसकी, तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो लड़के बच्चे हैं, मेरे गांव के वासी हैं, मेरे ढाणियों में रहते हैं, आसपास के गांवों में रहते हैं, शहर के लोग हैं, जो जिसकी तमन्ना होगी सीखने के लिए, हम वहां खोलेंगे तो सब के लिए वो सीखने को मिलेगा।
0: बिल्कुल, और जब ये इतना खूबसूरत है, इतनी ध्वनि है, और हम सब चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे और इस मीठी ध्वनि को हम सब महसूस कर सकें। तगरम जी, एक बात और भी है, देखिए कि जहां पर जैसे कि ये आपने कहा पहले सिंध में बनता था, सिंध से भारत, मतलब ये जो अलग हो गया तो यहां भारत, मतलब हम कहें कि राजस्थान के अंदर आपने इसको बना करके जिस तरह से यहां पर इसको ऊंचाइयां दी हैं, क्या आपको मालूम है कि जहां ये सिंध का जो ये वाद्य यंत्र है, क्या वहां भी बजाने वाले हैं, क्या आपके संपर्क में हैं?
1: हाँ, सिंध वाले लोग अभी जो पहले सिंध में बनते थे ना, वो सिंध वाले लोग क्या कि वो बलोचिस्तान के लोग है जो वो ज्यादा बनाते हैं, वो बलोचिस्तान अलग हो गया, अब सिंध में जो लोग है उनके पास भी मुश्किल से मिलता है तो वो भी बलोच से मंगाते हैं, तो भले सिंध वाले ने मेरे को एक दो आदमियों ने पहले कोई इसमें फेसबुक में लिखा कि भाई आपकी तगरम जोड़ी बनाई हुई भेजो।
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा भाई पैसा आप मेरे पास कैसे पहुंचाओगे, तो कहा आपका ऑनलाइन नंबर दे दो मेरे को, भाई नंबर से तो मैं दे नहीं सकूंगा, क्योंकि हमारे कोई अनपढ़ आदमी हूं मैं, कहीं उसके CID के चक्कर में कहीं फंस ना जाऊं, तो मैं को भैया आपका कोई आदमी आएगा यहाँ पर तो मैं दे दूंगा,
0: ले जा
1: पासपोर्ट पे कोई आ जाए तो मैं दे दूंगा, बाकी मेरे
0: क्योंकि ये इतना खूबसूरत वाद्य यंत्र है, कई विदेशी लोग जो आते हैं आपकी ध्वनि सुनकर के वो भी मांग करते होंगे कि हमको बना के दे दो, तो क्या उनके लिए भी आप बना के देते हो उनको?
1: हाँ बिल्कुल, अभी भी एक मेरे पास मैसेज आया हुआ इटली का, वो बस आने वाला 8-10 दिन में, तो उनके लिए मैं वो उन्होंने ऑर्डर दिया है तो एक जोड़ा उनको लिए बना के रखूंगा। और ऐसे मतलब मेरे पास एक पहली बार जब फ्रांस का ऑर्डर आया था वो उन्होंने मेरे को एक मशीन भी दिलाई थी,
0: अच्छा बनाने
1: 50,000 की, वो उनको क्या कि पहली बार तो मैंने उसको 5-6 जोड़ियां दी थी, तो फिर वो 2 साल बाद आया तो खूब बहुत सारा ऑर्डर लेके आया, तो मेरे को 150-150 जोड़ी बनानी थी। तो अब वो बोल रहा था कि भाई तू ऐसे बनाएगा तो
0: कब बनेगा,
1: साल भर में भी नहीं बनेगा, तो कोई उपाय है तो उपाय तो मशीन ऐसे हो तो फिर मैं बन सकती
0: थी। क्या बात।
1: हाँ तो क्या को फर्नीचर वाली मशीन जो वो मैंने आइडिया लगाया तो मैं उसमें कुछ जुगाड़ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो फर्नीचर वाली मशीन हम उस टाइम में आज से 25 साल पहले से
0: लाए थे आप,
1: लाया था मैं, तो वो अंग्रेज बेचारा वो साथ में ले जा करके मुझे दिलाई थी,
0: और
1: तो
0: उसी मशीन से आज भी
1: उसी मशीन से अब मैं थोड़ा राहत मिली मुझे, क्या बनाने के लिए थोड़ा आसान से बनता है। तो फिर मैंने उनको 100 जोड़े
0: बना के दिए
1: मैंने स्पीड से, एक साल के अंदर 100 जोड़ी बनाई थी। उस टाइम क्या मैंने थोड़ा स्टाफ भी लगाया था तो हो गया था।
0: तो ये भारत का वाद्य यंत्र विदेशों में भी खूब जा रहा है और डिमांड भी है, और उसका कारण है हमारे तगाराम जी। और तगाराम जी हम बात करें, आपकी बहुत मीठी एक मधुर धुन है मेरे वतन के लोगों, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को वो सुना दें।

0: बहुत खूबसूरत। और देखिए तकाराम जी, आपकी ये ध्वनियां आपको उस ऊंचाई पर लेकर आई हैं जहां पर हर किसी की कामना होती है, और ये अलगोजा के माध्यम से आपको सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और आज हमारे श्रोताओं के सामने आपने इस अलगोजा की आपके बचपन से अब तक की यात्रा का पूरा वृतांत सुनाया, और मधुर मीठी ध्वनियां भी आपने हमारे श्रोताओं के लिए सुनाई, और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो सम्मान मिला है और उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाजों में आप सुन रहे हैं फिल्म नमस्ते लंदन का ये गीत, जावेद अख्तर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे हैं अभी गजनी फिल्म का ये गाना, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में न्यूयॉर्क फिल्म का ये गीत, संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूज़िक।

0: सूर्य नगरी चैनल है। वक्त हो रहा है हिंदी और अंग्रेजी समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

64.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री मनीष शर्मा का राग भैरवी में जल तरंग वादन। आपके साथ तबले पर हैं शब्बीर हसन।